0: Look at the irony. At the SCO summit in Bishkek, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif begged for water. But a day later, when the rain gods fulfilled his wishes, almost the entire power center of Pakistan got submerged. These are the scenes from Islamabad and Rawalpindi. 4 to 5 feet of water in several areas. Cars floating down flooded streets. Homes inundated. Possessions destroyed. 3 people killed and residents left counting their losses.
1: ये बेड है, ये मैं मल्ले में से मांग के लाया हूँ। ये चरपाई मैंने सामने बंदों से मांगी है कि यार मुझे चरपाई दे दो, खाली बैठने की जगह दे दो। लेकिन मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। और ये देखें, ये हर चीज नुकसान है, लेकिन मैं आज जो हूँ ना बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मैं ये आपको घर के अंदर की मैं तो आपको सारी जाना कराता हूँ। मेरा मोटरसाइकिल जो है वो भी ये देखे ये डूब गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इस नाली की वजह से कि नालों की सफाई नहीं हो रही और मसाइल दुनिया के हल हो रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आज मैं खुश हूँ।
0: हैवी रेनफॉल ओवरवेल्म्ड रावलपिंडी'स ड्रेनेज सिस्टम। स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर ऑर्डर्ड शट as authorities struggled with the flooding. In places, cars are being carried away like toys. Elsewhere, vehicles are almost completely submerged. Roads have turned into streams. Drains and streets have virtually become indistinguishable.
1: यार ये हमारे साथ जो है ना, ये हम पाकिस्तान में ये सलूक हमारे साथ हो रहा है। मैं आप कहते पता नहीं, स्विट्जरलैंड का स्विमिंग पूल नहीं है, ये नापाक पानी है जिसके अंदर मैं खड़ा होके और अपनी फरियाद दर्जी करूं। मैं फरियाद करूं अपने पुरानों के सामने के इधर आओ और इस मसले को हल, कौन मसले है, इन मसाइल को कौन हल करे।
0: पाकिस्तान वॉन्टेड मोर वाटर, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद गॉट इट। एज दे से, When it rains, it pours. Bureau Report, India Today.
2: The problem with Pakistan is poor management, corruption, and that they haven't invested in infrastructure. They choose to blame India instead, and the generals keep enriching themselves. But from Pakistan, I want to shift focus to Nepal. They fought very hard to recover. It's a country you can be very proud of. You can be very proud of their people, the resilience the people of Nepal have shown. The flood disaster, it's left a landscape of mud, rubble, unimaginable

0: losses. Once bustling towns, they were either virtually wiped out or they bear very difficult scars of a devastating flood. Homes have been swept away, buildings have been swept away, roads have been destroyed, bridges have been destroyed. People are now desperately searching for their loved ones. Amidst all of this, there is an apprehension that there could be another deluge. Now, there are reports and very disturbing reports that people are actually performing last rites with recovered mortal remains, fearing that some of their loved family members may never return. India Today's Ashutosh Mishra, our man on ground, he's traveled to some of the most difficult areas and he's brought us this report. Take a look.
1: यहाँ ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए अभी भी सड़क मार्ग नहीं है, और उन इलाकों में जो एकदम पतले रास्ते हैं वहाँ पर आप सिर्फ दो पहिया रास्तों के जरिए ही, थोड़ा ये जोखिम भरा इलाका है। लेकिन अब ये देखिए, ये जो सारा मलबा इसलिए क्योंकि कुछ रास्तों को बनाने की कोशिश की जा रही है सड़कों को फिर से सही करने के लिए, लेकिन मलबे की ऊंचाई जो पूरा इलाका बताता है कि तबाही की तस्वीर कितनी भयानक है। भटपोशी अपने साथ जो तबाही लेकर के आई है, क्यों उसमें जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, और अभी भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर इस त्रासदी में कितने लोगों ने जान गंवाई है। नेपाल में आई आपदा में लोगों को बचाव के लिए कई सारे लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद जो हर मुश्किल में लोगों के साथ खड़े आए हैं, और सोनू सूद भी नेपाल पहुंचे हैं और इस समय रसुआ के पास, जब रसुआ के रास्ते में नुआकोट के सबसे आखिरी गांव में सोनू सूद अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं मदद के लिए। उन इलाकों का जायजा ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राहत बचाव कार्य के लिए सोनू सूद अपने फाउंडेशन के साथ इस इलाके का जायजा ले रहे। देखिए, पूरा का पूरा शहर जो है मलबे में तब्दील हो चुका है और अब वो उन इलाकों में जा रहे हैं।
2: Incredible courage display in Nepal as I see people are being evacuated from the areas which were totally disconnected. Look at this. Right over the scary flow of Trishuli, the ropeway has been built by the locals, the administration, and now the people, those who were stranded for more than a week, are being evacuated with this extreme uphill task, mountain task exercise in Trishuli, in the hostile terrain. These people have faced the trauma of nearly a week, exactly a week ago when the mayhem started. This whole area was devastated. Massive giant bridges were washed away, and now these people who were literally stuck and locked in an area being evacuated with the rope bridges. Remember, reopening the roads, that remained absolutely challenging task. And now the administration, these volunteers, the young people are carrying out these operations by themselves. The people, those who have been literally disconnected from their villages, the families are being reunited. Look at this. This is how these operations being carried out.

0: हमला
1: वो क्यों नहीं देता जवाब इसका, उसे पूछिए ना कि कहां से आ रहा है, कौन थ्रेट दे रहा है। मैं तो उनसे आरोप लगाता हूं कि यही लोग थ्रेट दे रहे हैं और यही थ्रेट के जिम्मेवार है।
2: फारूक अब्दुल्ला का बयान एक सॉफ्ट सपोर्ट है आतंकवादियों को। फारूक अब्दुल्ला का बयान वही बयान है जैसा सोनिया गांधी ने दिया था बटला हाउस के समय, जब उनको आंसू आ गए थे बटला हाउस के आतंकवादियों के लिए, एज पर सलमान खुर्शीद। फारूक अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार कभी हुआ ही नहीं था। इससे ज्यादा दर्दनाक बयान कोई हो नहीं सकता। इससे ये स्पष्ट होता है कि अपने वोट बैंक के लिए कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय एनसी कर रही है, फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, और यही वो सोच है जिसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैक करते हैं, जिसमें आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं और कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार पे चुप्पी या उसका मखौल उड़ाया जाता है।
3: ये सारे आतंकवादी हमले, सारी चीजें, धमकियां, ये सब नफरत की चीजें, ये सब चुनाव के टाइम पे शुरू हो जाती हैं, हो रही हैं चुनाव के टाइम पर। और किसका, किसको इनका फायदा होता है? जिसको फायदा होता है वो इसके पीछे जिम्मेदार है, बस इतनी सी बात
4: है। On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin this hour right here. But do stay tuned as we come back after this short break on the other side with all the top stories and the latest updates within them. Stay tuned. Thank you for watching.

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: 6 years after Sushant Singh Rajput's manager Disha Salian's mysterious death, there is a fresh twist. The Bombay High Court has ordered a CBI probe after flagging what it calls certain suspicious circumstances in the investigation. The court says the police probe raises more questions than it answers. The loophole include delayed spot panchanama, unexplained police presence at the flat, questions over reported bleeding and the absence of blood-stained earth. The Bombay High Court also questioned the nature of Disha's injuries, noting that a fall from such a height did not result in fractures to the jaw or nasal bone. It added that the police suspected Disha's friend Rohan Rai, but they did not conduct the spot panchanama. The court has asked a senior CBI official to be appointed for investigation. The ruling says nobody will be treated as accused until reasonable offence is found. If a case is not made out and case is filed, the petitioner can appeal.
1: कोर्ट ने इनका पूरा झूठ पकड़ लिया. पहली चीज इसमें उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट बनाए थे सब झूठे पाए गए. इन्होंने खुद जो सीसीटीवी प्रोड्यूस किया उसमें भी इनका सुसाइड थ्योरी झूठा साबित हो गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी. तो इतना बोगस इन्वेस्टिगेशन, इनको लगता गरीब है तो हम कुछ भी कवर कर लेंगे. ये ऐसा नहीं होता है.
0: Disha's father Satish Salian has welcomed the CBI probe.
2: आपको कब ये चीज में कन्विंस हुआ कि कहीं ना कहीं कोई दोषी है, कोई आरोपी है? पहले इसको सुसाइड केस बताया जा रहा है.
3: दोषी तो रहेगा, दोषी के बिना थोड़ी होएगा, मर्डर होएगा, ऐसा है.
2: खुश है आप इस फैसले से?
3: हाँ जरूर जरूर, 100%.
0: The Disha Salian case has also become a political battlefield. Her father had earlier alleged a link to Shiv Sena UBT leader Aditya Thackeray. Allegations Thackeray has denied. BJP MLA Ram Kadam has welcomed the court order, while NCPSP leader Supriya Sule has dismissed the renewed questions, saying she believed the matter was already over.
4: सवाल ये उठता है कि उस दौरान की उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही थी? रातों रात इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया गया? अब इस सारे प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी.
5: I have no idea, because to the best of my knowledge that case was over. I have no idea. I'll have to check and get back to you on that.
0: Years have passed. The questions have remained. Now the CBI has been asked to find the answers. Because for Disha Salian's family, this is no longer about allegations or politics. It is about knowing what happened to their daughter. With Mustafa Sheikh and Vidya in Mumbai, Bureau Report, India Today.
6: And joining me now is Satish Salian, father of Disha Salian, joins me along with advocate Nilesh Oza, who's the counsel for Mr. Salian. Good to have both of you on the show. Satish Salian ji, for the last few years, pichle kuch saalon se aap apni beti ke liye lad rahe hain. You claim ki सच्चाई बाहर आनी चाहिए, कि आप नहीं मानते हैं कि आपकी बेटी सुइसाइड की वजह से उनकी मौत हुई. क्योंकि अभी तक जितना भी एविडेंस पुलिस ने गैदर किया उसके मुताबिक उनका कहना ये सुइसाइड का केस था, देयर वाज नो फाउल प्ले. आप किस दृष्टि से आज के कोर्ट के इस निर्णय, इस ऑर्डर को देखते हैं कि उन्होंने कहा है सीबीआई की केस होनी चाहिए, किस तरह से देखते हैं?
7: मैं सब आज का दिन जज ने जो दिया है सही दिया है.
6: क्योंकि कोर्ट ने साफ किया है दैट नो वन कैन बी अक्यूज्ड एट दिस स्टेज, इस फैसले इस समय किसी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते. इस समय किसी के खिलाफ ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे यह पता चलता है कि पूरी तरह से फाउल प्ले है. कोर्ट ने कहा है नो वन शुड बी considered accused at this stage. How do you see it?
7: अभी तो कुछ नहीं बोल सकते. जब भी CBI report आएगा तभी बोल सकते हैं.
6: नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ओजा जी, how do you see it? आप lawyer हैं, how do you see it? Because the court has made it very clear. साफ कहा है कि there was इस समय यह कहना कि फाउल प्ले है यह गलत होगा. यस, देयर वर सम वीकनेसेस इन द इन्वेस्टिगेशन, Therefore, they are ordering this. But how do you see today's order? किस तरह से आज की order को आप देख रहे हैं?
8: नहीं, शायद order पढ़ा नहीं ठीक से. Court ने foul play पाया, इसीलिए CBI को transfer किया investigation और पूरे grounds दिया कि कहाँ कहाँ foul play है, कहाँ कैसा CCTV में दिख रहा है, वो story अलग है और ये story अलग है. कैसा उन्होंने postmortem report पे court ने disbelieve किया है, कैसा police का ADR पे disbelieve किया है. तो court ने उनका foul play पाया, उनका दोनों रिपोर्ट ये लीगली एडमिसिबल नहीं था करके तो नया FIR रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दिया है. एक चीज
6: सर, कोर्ट ने
8: दूसरी चीज
6: सर, सर कोर्ट ने किसी का नाम
8: नहीं
6: लिया
8: कि कोर्ट ने कहा कि FIR रजिस्टर होगा इनके स्टेटमेंट पे. इनके स्टेटमेंट में जो भी सस्पेक्ट जो भी लोग है उनके नाम आएंगे. आदित्य ठाकरे नदर के खिलाफ FIR रजिस्टर होगा, गैंग रेप और मर्डर के सेक्शन में रजिस्टर होगा. कोर्ट का कहना है कि जिनके खिलाफ में एविडेंस मिलेंगे उनके खिलाफ में उनको अक्यूज बनाइए, प्रोसीड कीजिए. जिनके खिलाफ में एविडेंस नहीं है
6: ओजा जी,
8: मत बनाइए.
6: ओजा जी, कोर्ट ने किसी का नाम नहीं लिया है. आप आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं. कोर्ट ने कहीं आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया, ये आप ले रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेंगे, सीबीआई के साथ CBI को मदद करेंगे और उसके बाद तय होगा क्या इस केस में कोई फाउल प्ले है या नहीं. ये बाद में प्राइमा फेसी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोई आदित्य ठाकरे इसमें इन्वॉल्व है. ये बड़ा सेंसिटिव केस है. किसी का नाम ऐसे कैसे आप ले सकते हैं कि आदित्य ठाकरे इसमें इन्वॉल्व है? कोर्ट ने तो नहीं कहा उनका नाम, आप कह रहे हैं.
8: पूजा जी सुनिए, आपने ऑर्डर फिर से नहीं पढ़ा है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं. कोर्ट ने कहा है इनके स्टेटमेंट पे FIR रजिस्टर होगा. तो FIR जब रजिस्टर होता है, जब इनके जो नाम दिए गए तो नाम कोर्ट थोड़ी देगा, ये नाम देंगे. आपको इतना बेसिक प्रोसीजर भी नहीं पता?
6: नहीं,
8: नाम ये देंगे, उसके बेस पे FIR रजिस्टर होगा. आप नहीं, हमारा पहले से आपके ऊपर यही आरोप है, आप एक एजेंडा लेके चलते हो. आप आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती को ग्लोरीफाई करने के लिए आप
6: मैं किसी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा. ओजा जी, आज की तारीख में आपने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया, उनको तो बरी किया गया है. आप कह रहे थे कि वो मर्डर में शामिल थी, उनको तो CBI का क्लोजर रिपोर्ट है, यस और नो? आप आदित्य ठाकरे आपके खिलाफ आप कह रहे हैं कि इस समय तक कोई सबूत तो नहीं है, एक इन्वेस्टिगेशन अब होगा. आप अच्छी तरह से कानून जानते हैं, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, फिर भी आप कह रहे हैं कि आज के ऑर्डर के बाद आदित्य ठाकरे पर एक उंगली आप उठा रहे हैं एक बार फिर.
8: कौन से सबूत देख लिए पहली चीज, और झूठा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो आप? रिया चक्रवर्ती को बरी हुई कहा है? CBI की रिपोर्ट आई है, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की है. आरुषि तलवार में रिपोर्ट के बाद में भी अरेस्ट वारंट निकला था. दूसरी चीज, रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केस में आज भी आरोपी है. तो हमारे आरोप आपके खिलाफ बिल्कुल सही है. आप सिर्फ वो दोनों के एजेंट बोल के काम करते हो, यही हमारा आरोप.
6: मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, ये सब मत यूज कीजिए. मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ. मैं जो कह रहा हूँ सर, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि उनको फाउल प्ले है. उन्होंने कहा है कि Police needs to, there was certain gaps in police probe that they have raised questions over. लेकिन ये नहीं कहा है कि foul play हुआ है या murder हुआ है. ये तो there is a फर्क ना. कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है कि there is a murder of that दिशा सालियान को murder किया गया, जो आपका आरोप है.
8: बिल्कुल बिल्कुल, आप गलत कह रहे हो. यस,
6: अब मैं गलत कह रहा हूं. मैं क्या गलत कह रहा हूं इसमें सालियान जी? मैं क्या गलत कह रहा हूं आप बताइए. सालिया जी आप बताइए, आपको विश्वास है कि CBI के हाथ में अब इंक्वायरी है? जो भी CBI कहेगी, अगर क्लोजर रिपोर्ट हुआ कि किसी को दोषी नहीं पाया गया तो क्या आप मानेंगे CBI की रिपोर्ट को? क्या आपको उसमें विश्वास होगा, या किस आपको CBI में विश्वास है या नहीं है सर? सालिया जी, विश्वास है ना?
8: लेकिन उसमें कोर्ट ने ऑर्डर में यह भी लिखा है कि अगर आपको लगा CBI की रिपोर्ट सही नहीं तो आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं. आप ऐसे घुमा के ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? आपका मन का सेटिस्फेक्शन करने के लिए राजदीप जी?
6: नहीं सर, कानून के मुताबिक मैं जा रहा हूँ. इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, आप तो खुद लॉयर है. आप आज की तारीख में कह रहे हो द वर्ड फाउल प्ले, जो मैंने वर्ड यूज किया, कहीं ये नहीं कहा गया दैट देयर वाज फाउल प्ले. They have questioned the investigation of the police, but not said फाउल प्ले मेरे सामने ऑर्डर है, आप मुझे बताइए, देयर इज नो प्रूफ एज येट ऑफ फाउल प्ले, दैट्स ऑल आई एम सेइंग सर।

0: अब तो पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हैव अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, सही है कि नहीं?
1: पुलिस ने अगर अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है, 50 जजमेंट है कि अगर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन फेयर है तो कोर्ट सीबीआई को ट्रांसफर नहीं करता है। जब यहां सीबीआई को और एक एक मिनट आप प्यारा नंबर पढ़िए, चलिए प्यारा नंबर 34 पढ़िए, सीसीटीवी फुटेज, पुलिस ऑफिसर दिशा के जो उनका एलिस्ट टाइम है 1:30 बजे का मरने का, उसके आधा घंटा पहले पुलिस वहां पर पहुंच गई है। एडीआर झूठा बनाया पुलिस ने, उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट ने कहा कि ये हम इस पे विश्वास नहीं रख सकते हैं, उन्होंने वजनल स्वैप को चेंज करके वजनल स्मेयर किया। मतलब इतने प्रूफ होने के बाद में भी आपके दिल से आपके वो आदित्य ठाकरे की भक्ति जा नहीं रही है, तो ऐसे अनफेयर पर्सन के साथ सॉरी सॉरी सॉरी। और एक वन मोर थिंग राजदीप जी सुनिए, मैंने इंटरव्यू के पहले भी बोला है, हमने एफिडेविट पे कंप्लेंट में सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट और सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी में आपको भी अक्यूज बनाया है, आपने उनको ग्लोरीफाई करने का काम किया, इसलिए हम आपके चैनल पे नहीं आ रहे थे, और आज आपने साबित कर दिया कि आप वही हो, और अब मिलते हैं हम कोर्ट में आपसे, डोंट वरी
0: सर, आई विल मीट यू इन कोर्ट। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस सर, ओझा जी एंड सालियान जी, आई एम सिंपथेटिक टू योर लॉस, बट आई एम अ जर्नलिस्ट हियर, आई एम नॉट हियर टू रन सम कैंगरू मीडिया ट्रायल मिस्टर ओझा। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, इस समय हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते जिस तरह से आप यहां आकर ठहरा सकते हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको, उसके आगे मैं नहीं जा
1: रहा। कौन बोल रहा है? लेकिन आप उसको क्लीन चिट क्यों दे रहे?
2: आपने
0: क्लीन चिट कहा
2: दी? आपने झूठा स्टेटमेंट क्यों दिया? मैंने कहा कोर्ट ने ये नहीं कहा है देयर इज फाउल प्ले, कोर्ट ने कहा सीबीआई इसकी जांच करेगी,
1: सुनो, अगर आपका ये इंटरप्रिटेशन है तो हमको आपके सामने कोई बात नहीं करनी, आप आपका चलने दीजिए, आपका कंक्लूजन आपके पास में, हम लोग जस्ट फेयर लोगों के साथ में हम उसको इंटरव्यू देते हैं, जो स्ट्रॉमन फैलेसी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और सोफेस्ट्री वाले लोग हैं, हम उनके साथ उनके पास में स्टेटमेंट नहीं देते। जय हिंद, वी आर लिविंग।
0: थैंक यू, यू वॉन्ट टू गो ऑफ एयर, थैंक यू नीलेश ओझा, मिस्टर सालियान, thank you very much for joining me. I want to get a sense, therefore, as you saw, this is getting acrimonious. That was recorded earlier. Majid Memon, senior advocate, Supreme Court, is joining us, former member of parliament also. Majid Memon, how do you see what we just heard? The lawyers of Satish Salian are claiming victory based on the fact that there will now be a CBI probe. He's saying now Aditya Thackeray will be booked. Do you believe that what the court has done today should lead us to that conclusion or not?
3: Well, this development must be said to be partial success for the father of the deceased, who has moved the court, suggesting that the investigation conducted so far by local police was partisan and they were trying to probably cover up something, maybe because of certain political influence. That is what his apprehension has been. The court has passed an order asking CBI to register FIR, but at the same time, court has also forewarned CBI not to name any accused person at the commencement stage until some positive, satisfactory evidence is emerging against anybody for involvement in a serious crime like murder and rape.
0: Let me get that clear. There's a Mumbai police case which was investigated 6 years ago. Disha Salian committed suicide in July of 2020. We are now in August 2026. In that case, the police said they found no foul play. Now there will be a CBI inquiry that takes place. Presumably, there will be an FIR that has to be registered. If the FIR is registered, is it registered against unnamed persons or is it registered against specific persons? Is the father entitled to name, let's say, an Aditya Thackeray in that FIR? Or has the court made it very clear, no one can be accused at this stage?
3: Correct. The FIR is going to be registered consequent upon the High Court's directions against unknown persons. And then they would start commencing collecting evidence. But I have my own reservations that a case which is the incident which is more than 6 years old, what new evidence are they expected to get? They may re-examine the postmortem and medical report of the victim girl, because if the accusations are of rape or

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: बेतरावती में हूँ। आज तक पहला नेटवर्क बेतरावती के उस इलाकों में है, ये पूरी तरह से बह चुका है, जिसे फुटहिल कहा जाता है। ठीक पहाड़ियों से रसुआ शुरू होता है और ये एक त्रिशूली की जो धारा है 30 मीटर चौड़ी धारा होती थी, आज इसका दायरा 600 मीटर बढ़ चुका है। 20 गुना जो है त्रिशूली ने अपना फैलाव, ये घर मकान दुकान, अगर आपको पीछे लग रहा होगा कि नदी का किनारा नहीं, 9 दिन पहले ये बाजार गुलजार था। मानसरोवर के यात्री जाते थे इसी बेतरावती पवित्र शहर में, डुबकी लगाते थे, यहाँ कैंप करते थे, कहीं बस अड्डा था, कहीं बाजार था, सब कुछ मलबे में है। सड़क के दूसरी तरफ भी ये पूरा रास्ता, जितने पुल ब्रिज थे वो सब कुछ बह गए हैं। अब क्या है कि त्रिशूली का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे कम होने लगा है और अपने साथ जैसे जैसे पानी कम हो रही है वैसे वैसे तबाही की वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो मार्मिक मंजर दिखाई दे रहा है इसी इलाके में। दरअसल जैसे ही रसुआ से पानी नीचे आया, सबसे बड़ा बाजार यही था, यहाँ के जो लोग थे वो ऊपर पहाड़ी की तरफ भागे, लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चे महिलाएं थे जिनके बारे में कोई सुराग नहीं है। अब जैसे मैं आया हूँ वैसे तमाम सारे लोग दुर्गम रास्तों से, वो लोग हैं जो यहाँ पहाड़ियों को पार करते हुए पहुँच रहे, देखने कि अपनों का कोई सुराग मिल जाए। ये पूरी इमारत है, अगर लोग समय रहते नहीं भागे होंगे बहुत मुश्किल है कि वो बच पाए, क्योंकि ऊपर की तो पूरी मंजिल ही साफ हो चुकी है। सोचिए इतने मोटे छड़ है, ये सब कुछ बेंड हुआ, पूरी की पूरी छत जो है वो जा चुकी है। आगे जाता हूँ, यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ये किसी बच्चे की किताब है वो हिस्सा, सोचिए कि ये बच्चे महिलाएं बुजुर्ग सबसे ज्यादा इस तरह की आपदा में वो प्रभावित होते हैं, उसकी किताब यहाँ रह गई है, छोटे बच्चों के जूते रह गए, संभवतः वो भागने की कोशिश कर रहे थे।
1: Now talk about timing, viewers. Just yesterday, in fact, just a few days ago, as we are speaking at the SCO summit, it was Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif crying foul over the Indus Waters Treaty, demanding that water must not be used as a political leverage. And only 3 days later, Pakistan has a very different water problem on its hands. Heavy rains have battered Islamabad and Rawalpindi, the country's political and military power centers. Streets are under several feet of water. Cars are floating, homes have been inundated. And at least 3 people have already been killed in the situation. As they say, when it rains, it pours. Take a look at this report.

0: Look at the irony. At the SCO summit in Bishkek, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif begged for water. But a day later, when the rain gods fulfilled his wishes, almost the entire power center of Pakistan got submerged. These are the scenes from Islamabad and Rawalpindi. 4 to 5 feet of water in several areas. Cars floating down flooded streets. Homes inundated. Possessions destroyed. 3 people killed and residents left counting their losses.
1: ये बेड है, ये मैं मल्ले में से मांग के लाया हूँ। ये चरपाई मैंने सामने बंदर से मांगी है कि यार मुझे चरपाई दे दो, खाली बैठने की जगह दे दो। लेकिन मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। और ये देखें, ये हर चीज नुकसान है, लेकिन मैं आज जो हूँ ना बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मैं ये आपको घर के अंदर की मैं तो आपको सारी जाना कराता हूँ। मेरा मोटरसाइकिल जो है वो भी ये देखे, ये डूब गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इस नाली की वजह से कि नालों की सफाई नहीं हो रही और मसाइल दुनिया के हाल हो रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आज मैं खुश हूँ।
0: हैवी रेनफॉल ओवरवेल्म्ड रावलपिंडी'स ड्रेनेज सिस्टम। स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर ऑर्डर्ड शट as authorities struggled with the flooding. In places, cars are being carried away like toys. Elsewhere, vehicles are almost completely submerged. Roads have turned into streams. Drains and streets have virtually become indistinguishable.
1: यार ये हमारे साथ है ना, ये हम पाकिस्तान में ये सलूक में हमारे साथ हो रहा है। मैं आप कहते पता नहीं, स्विट्जरलैंड का स्विमिंग पूल नहीं है, ये नापाक पानी है जिसके अंदर मैं खड़ा होके और अपनी फरियाद दर्जी करूं। मैं फरियाद करूं अपने हुक्मरानों के सामने के इधर आओ और इस मसले को हल, कौन मसले है, इन मसाइल को कौन हल करे।
0: पाकिस्तान वॉन्टेड मोर वाटर, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद गॉट इट। एज दे से, when it rains, it pours. Bureau Report, India Today.
2: On that very note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned as we come back after this short break into the next hour with all the latest updates coming into the top stories of the very day. Thank you for watching. Stay tuned.

0: Teams, that is, continue the difficult search inside the hydropower tunnels as Nepal begins the long road from rescue to recovery as we speak. And on that note, viewers, let's also take you through this ground report. Bhetravati, the largest town situated at the foothills of the Rasuwa, has been completely devastated. The town was swept away by the river's torrent as it came downhill from the glacial collapse that took place. The schools, the villages, the townships, the temples, nothing remains. And India Today is the only TV channel in the town which now is in complete ruins. Here's a report, take a look.
1: चुनौती ये है कि उन गांवों तक पहुंचा जाए जहां लोग हैं। मैं इस समय बेतरावती में हूं। आज तक पहला नेटवर्क बेतरावती के उस इलाकों में है, ये पूरी तरह से बह चुका है, जिसे फुटहिल कहा जाता है। ठीक पहाड़ियों से रसुआ शुरू होता है और ये एक त्रिशूली की जो धारा है 30 मीटर चौड़ी धारा होती थी, आज इसका दायरा 600 मीटर बढ़ चुका है। 20 गुना जो है त्रिशूली ने अपना फैलाव, ये घर मकान दुकान, अगर आपको पीछे लग रहा होगा कि नदी का किनारा नहीं, 9 दिन पहले ये बाजार गुलजार था। मानसरोवर के यात्री जाते थे इसी बेतरावती पवित्र शहर में, डुबकी लगाते थे, यहां कैंप करते थे, कहीं बस अड्डा था, कहीं बाजार था, सब कुछ मलबे में है। सड़क के दूसरी तरफ भी ये पूरा रास्ता, जितने पुल ब्रिज थे वो सब कुछ बह गए हैं। अब क्या है कि त्रिशूली का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे कम होने लगा है और अपने साथ जैसे जैसे पानी हो रही है वैसे वैसे तबाही की वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो मार्मिक मंजर दिखाई दे रहा है इसी इलाके में। दरअसल जैसे ही रसुआ से पानी नीचे आया, सबसे बड़ा बाजार यही था, यहाँ के जो लोग थे वो ऊपर पहाड़ी की तरफ भागे, लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चे महिलाएं थे जिनके बारे में कोई सुराग नहीं है। अब जैसे मैं आया हूँ वैसे तमाम सारे लोग दुर्गम रास्तों से, वो लोग हैं जो यहाँ पहाड़ियों को पार करते हुए पहुंच रहे हैं देखने कि अपनों का कोई सुराग मिल जाए। ये पूरी इमारत है, अगर लोग समय रहते नहीं भागे होंगे बहुत मुश्किल है कि वो बच पाए, क्योंकि ऊपर की तो पूरी मंजिल ही साफ हो चुकी है। सोचिए इतने मोटे छड़ है, ये सब कुछ बेंड हुआ, पूरी की पूरी छत जो है वो जा चुकी है। आगे जाता हूँ, यहाँ पर ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, ये किसी बच्चे की किताब है वो हिस्सा, सोचिए कि ये बच्चे महिलाएं बुजुर्ग सबसे ज्यादा इस तरह की आपदा में वो प्रभावित होते हैं, उसकी किताब यहाँ रह गई है, छोटे बच्चों के जूते रह गए, संभवतः वो भागने की कोशिश कर रहे थे।
0: इंडिया टुडे एट फ्लड हिट नेपाल वेयर सम हाउसेस रिफ्यूज टू फॉल एट द धुंगे बाजार। Many miracle houses that survived this very flood fury. Many houses survived the massive flood impact. Some of those visuals were in fact going viral online. They remain intact despite being submerged in a large amount of mud while everything around them has gotten washed away with the flood fury. Take a look at this report.
1: नेपाल में आपने उस मकान के बारे में सुना जो भटकोशी के प्रकोप को झेल गई, वो घर बच गया, परिवार को निकालना पड़ा, लेकिन ऐसे चमत्कार बहुत सारे घरों के साथ हुए। जो नदी की धारा जो है अपने बीचों बीच इन मकानों के आई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा। जहां पर आपने वो पहला घर देखा था उसके आगे देखे दो और मकान है, ये दो मकान में तीसरा मकान जो सबसे पीछे है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, सब कुछ मलबे में चला गया। लेकिन उसके ठीक पीछे यानी नदी के पानी के करीब जो कि धारा किनारे पर, देखे मलबा 12 से 15 फीट है, इसके बावजूद भी वो जो दो मकान है वो बचे हुए हैं, लोग वहां पर छतों पर गए और चूंकि समय था तो समय रहते वो भागने में भी कामयाब हो गए। इसी के साथ देखिए, कहते हैं ना कि मिरेकल क्या होता है, यहाँ पर देखिए कुछ होटल्स हैं, नीचे की मंजिल अगर आप देखेंगे पहली और दूसरे मंजिल वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए, सब कुछ नहीं है, लेकिन लोगों के पास भागने के लिए यहाँ भी समय था, वो भी अपने छतों पर चले। अब ठीक इसके पीछे त्रिशूली नदी बह रही है और पानी कहाँ तक था ये देखिए, जहां मैं खड़ा हूँ पानी मलबा यहाँ पर 12 से 15 फीट तक आता है, लेकिन उसके बावजूद इन इमारतों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। पहाड़ों पर जो निर्माण कार्य था इतना मजबूत था कि वो इस प्रवाह को और उसकी ताकत को झेल गया। इसी तरह ढूंगे बाजार में देखिए, पीछे भी इधर मकान है, ये एक दो पीछे तीन मंजिल और आगे कृषि भवन का जो ब्लॉक है, ये सारे मकान जो कि बिल्कुल धारा के बीचों बीच थे प्रवाह को, उसके बावजूद ये बचे रह गए। लेकिन आप सोचिए कि विडंबना देखिए कि जो धारा के बीच में आए वो मकान बच गए, लेकिन सड़क के बिल्कुल किनारे जो कि पहले से ही ऊंचाई पर हैं, मलबा इतना आया कि यहाँ के मकान, ये दुकानें ढह गई, ये मकान ढह गया, इस मकान का पूरा हिस्सा गिर गया, यहाँ पर जो मकान है ये भी पूरी तरह बर्बाद हो गया, इसके ऊपर की मंजिल जो है, सोचिए ये मकान जो कि सड़क के किनारे ऊंचाई पर है और इतनी ऊंची मलबा भर गया और ये सब कुछ पीछे देखिए, ये तबाही का मंजर है। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, चाहे इन घरों की बनावट कह लीजिए यानी एक वैज्ञानिक तरीका, या फिर कुछ तो था ऐसा जिसकी वजह से जब पानी गया उसके बाद ये तमाम मकान उस सैलाब की ताकत को झेल गए।
0: On that very note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here, this hour. But do stay tuned to India Today after this break as we keep continuing to follow up on all of the top stories of the day with all of the latest updates. Thank you for watching. This is Priya Kundu. Stay tuned.

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: जो सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: And well, a week after the catastrophic flash floods tore through Nepal, the scale of the tragedy that continues to mount. More than 1,200 people have been reported dead. Over 4,200 still remain missing, while nearly 12,000 have been rescued. Prime Minister Balin Shah has told the parliament that Nepal never refused international assistance and thanked India and the other friendly nations for stepping up with rescue and relief support. Prime Minister said that immediate priority remains rescuing those who are still trapped and supporting families devastated by the floods. Meanwhile, specialized teams continue the difficult search inside hydropower tunnels as Nepal begins the long road from rescue to recovery. There you see rescue operations that are going on in full swing as the focus is on getting out those who are still under the debris and some of them who may have survived. The numbers are frightening. More than 1,200 people who are dead, 4,200 who still remain missing, and 12,000 who have been rescued so far. In fact, Betravati, the largest town that is situated on the foothills of Rasuwa, is completely devastated. The town was swept away by the river's torrent. Schools, villages, townships, temples, nothing remains. India Today is the only channel to get you of what is the situation in that town and the ruins that lay bare. Watch this report.
1: चुनौती ये है कि उन गांवों तक पहुंचा जाए जहां लोग हैं। मैं इस समय बेतरावती में हूं। आज तक पहला नेटवर्क बेतरावती के उस इलाकों में है। ये पूरी तरह से बह चुका है, जिसे फुटहिल कहा जाता है। ठीक पहाड़ियों से रसुआ शुरू होता है और ये एक त्रिशूली की जो धारा है 30 मीटर चौड़ी धारा होती थी, आज इसका दायरा 600 मीटर बढ़ चुका है। 20 गुना जो है त्रिशूली ने अपना फैलाव, ये घर मकान दुकान, अगर आपको पीछे लग रहा होगा कि नदी का किनारा नहीं, 9 दिन पहले ये बाजार गुलजार था। मानसरोवर के यात्री जाते थे इसी बेतरावती पवित्र शहर में, डुबकी लगाते थे, यहाँ कैंप करते थे, कहीं बस अड्डा था, कहीं बाजार था, सब कुछ मलबे में है। सड़क के दूसरी तरफ भी ये पूरा रास्ता, जितने पुल ब्रिज थे वो सब कुछ बह गए हैं। अब क्या है कि त्रिशूली का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे कम होने लगा है और अपने साथ जैसे जैसे पानी कम हो रही है वैसे वैसे तबाही की वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो मार्मिक मंजर दिखाई दे रहा है इसी इलाके में। दरअसल जैसे ही रसुआ से पानी नीचे आया, सबसे बड़ा बाजार यही था, यहाँ के जो लोग थे वो ऊपर पहाड़ी की तरफ भागे, लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चे महिलाएं थे जिनके बारे में कोई सुराग नहीं है। अब जैसे मैं आया हूँ वैसे तमाम सारे लोग दुर्गम रास्तों से, वो लोग हैं जो यहाँ पहाड़ियों को पार करते हुए पहुंच रहे, देखने की अपनों का कोई सुराग मिल जाए।

0: जो है वो जा चुकी है। आगे जाता हूँ, यहाँ पर ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, ये किसी बच्चे की किताब है वो हिस्सा। सोचिए कि ये बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सबसे ज्यादा इस तरह की आपदा में वो प्रभावित होते हैं। उसकी किताब यहाँ रह गई है, छोटे बच्चों के जूते रह गए, संभवतः वो भागने की कोशिश कर रहे थे।
1: And well, India today was at the flood-hit Nepal, where some houses refused to fall at Dunge Bazar. Many miracle houses that managed to survive that fury, many houses that survived the massive flood impact, they remain intact despite being submerged in a large amount of mud.
0: नेपाल में आपने उस मकान के बारे में सुना जो भटकोशी के प्रकोप को झेल गई, वो घर बच गया, परिवार को निकालना पड़ा, लेकिन ऐसे चमत्कार बहुत सारे घरों के साथ हुए। जो नदी की धारा जो है अपने बीचों बीच इन मकानों के आई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा। जहां पर आपने वो पहला घर देखा था उसके आगे देखे दो और मकान है। ये दो मकान में तीसरा मकान जो सबसे पीछे है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, सब कुछ मलबे में चला गया। लेकिन उसके ठीक पीछे यानी नदी के पानी के करीब, जो कि धारा किनारे पर, देखे मलबा 12 से 15 फीट है, इसके बावजूद भी वो जो दो मकान है बचे हुए हैं। लोग वहां पर छतों पर गए और चूंकि समय था तो समय रहते वो भागने में भी कामयाब हो गए। इसी के साथ देखिए, कहते हैं ना कि मिरेकल के आदाब। यहाँ पर देखिए कुछ होटल्स हैं, नीचे की मंजिल अगर आप देखेंगे, पहली और दूसरे मंजिल, वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए, सब कुछ नहीं है। लेकिन लोगों के पास भागने के लिए यहाँ भी समय था, वो भी अपने छतों पर चले। अब ठीक इसके पीछे त्रिशूली नदी बह रही है और पानी कहाँ तक था ये देखिए, जहां मैं खड़ा हूँ पानी मलबा यहाँ पर 12 से 15 फीट तक आता है, लेकिन उसके बावजूद इन इमारतों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। पहाड़ों पर जो निर्माण कार्य था इतना मजबूत था कि वो इस प्रवाह को और उसकी ताकत को झेल गया। इसी तरह ढूंगे बाजार में देखिए, पीछे भी इधर मकान है, ये एक दो पीछे तीन मंजिल और आगे कृषि भवन का जो ब्लॉक है, ये सारे मकान जो कि बिल्कुल धारा के बीचों बीच थे प्रवाह को, उसके बावजूद ये बचे रह गए। लेकिन आप सोचिए कि विडंबना देखिए कि जो धारा के बीच में आए वो मकान बच गए, लेकिन सड़क के बिल्कुल किनारे जो कि पहले से ही ऊंचाई पर हैं, मलबा इतना आया कि यहाँ के मकान, ये दुकानें ढह गई, ये मकान ढह गया, इस मकान का पूरा हिस्सा गिर गया, यहाँ पर जो मकान है ये भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसकी ऊपर की मंजिल जो है, सोचिए ये मकान जो कि सड़क के किनारे ऊंचाई पर है और इतनी ऊंची मलबा भर गया और ये सब कुछ पीछे देखिए, ये तबाही का मंजर है। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, चाहे इन घरों की बनावट कह लीजिए यानी एक वैज्ञानिक तरीका, या फिर कुछ तो था ऐसा जिसकी वजह से जब पानी गया उसके बाद ये तमाम मकान उस सैलाब की ताकत को झेल गए।
1: And we leave you with this special report. Yes, amid the devastation in Nepal, one house that has become a remarkable symbol of survival. As raging floodwaters and debris swept away almost everything around it, this turquoise house in Trishuli remains standing. It is now being dubbed Nepal's miracle house. But was it simply luck or did its construction and location help in withstanding the enormous force of the flood? We're getting you this special report.
2: Imagine watching an entire neighborhood disappear under a wall of water. And then one house is still standing. This is the house that has been dubbed Nepal's Miracle House. Not because it was untouched, but because while the floodwaters destroyed structures all around it, this one held firm. So what made this house different? Part of the answer may lie in how the house was built. The house was reportedly constructed with a reinforced concrete frame, a structural system built around concrete columns, beams, and steel reinforcement. Think of the steel inside the concrete as the house's internal skeleton. Concrete is strong under compression, while steel reinforcement helps the structure withstand tension and bending. And that becomes crucial when flood water isn't just rising, it's moving. Fast-moving water and debris can generate powerful lateral forces against a building. Structures that aren't designed to resist those sideways forces can be far more vulnerable to cracking, collapse, or being swept away. But a reinforced concrete frame connects the major structural elements. Columns, beams, and foundation, helping the building act more like one connected system. And then there is another crucial factor, the house's location. The structure appears to have been slightly outside the main path of the most destructive

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: फाइव डिस्टिंक्ट फेसेस, वन कॉमन पर्पस, इंडिया इन्फॉर्म्ड एंड अहेड, वेयर द साउथ फाइंड्स अ वॉइस, सुपर सिक्स, शार्प क्वेश्चंस, जीरो डिस्ट्रैक्शंस।
3: यू ऑल्सो स्पीक ऑफ पुअर चिल्ड्रन, Kangana ji, one can always draw analogies sitting high in ivory towers.
2: To the point, the nation's agenda, nothing else matters.
4: There are some who say Pakistan may not be on the verge of breaking. Our Pakistan army is unable to control the situation.
2: India first, where decades of experience speaks.
5: So you want to raise your voices, but what do you want to see?
2: News Today, exclusives that shape the headlines.
6: Southern states all unite saying that this is unfair on them.
2: News Track, every defining moment, every story that matters. The team that always speaks for you, because you matter.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Back sexist Maulana says do not belittle clerics for religious remarks, claims people who disagree need to accept remarks. Cleric said women must live within their homes. Nepal reels amid widespread destruction. Over 1,200 dead, more than 4,200 missing. India Today first channel in devastated Nepal town swallowed by torrential Trishuli River.
1: जैसे मैं आया हूं वैसे तमाम सारे लोग दुर्गम रास्तों से वो लोग हैं जो यहां पहाड़ियों को पार करते हुए पहुंच रहे हैं देखने कि अपनों का कोई सुराग मिल जाए। ये पूरी इमारत है, अगर लोग समय रहते नहीं भागे होंगे बहुत मुश्किल है कि वो बच पाए क्योंकि ऊपर की तो पूरी मंजिल ही साफ हो चुकी है। सोचिए इतने मोटे छड़ ये सब कुछ बेंड हुआ, पूरी की पूरी छत जो है वो जा चुकी है।
0: Raghav Chadha's name has been deleted from Punjab SIR draft, cries vendetta before Punjab poll. Sitting RS MP's name deleted by the Maan government. AAP government hits back, says Chadha trying backdated entry in poll rolls.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: ए यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हाय नमस्ते, माय नेम इज सेल्फ सिद्धांत कुमार निषाद और मैं लखनऊ यूपी कैपिटल से बिलोंग करता हूँ। मैं जो स्टार्टअप है मटियारी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली मटियारी जो है वो गांव से है मेरे, तो मेरा बैकग्राउंड आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और मैंने अपनी पढ़ाई जो है अपनी कम्प्लीट यूपी में की।
1: आई एम तेजस, आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम बीड महाराष्ट्र एंड आई एम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रॉम माई प्रोफेशन एंड आई हैव डन बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम पुणे and then I also completed masters from IIT Dhanbad. When I met with Siddhant at a coffee shop, it was a very random meetup, but when he explained his startup idea, like he is working from 5 years in this field of algae bacterium for like for sustainability and ecosystem and all, then I got some feeling that okay, this is something about my background or my field, so why can't I join this?
0: वी कम्स फ्रॉम अ टीयर थ्री टीयर फोर कॉलेजेस एरिया, सो जहाँ से इतना इकोसिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ कि स्टार्टअप चल जा पाए, स्टार्टअप इतना आगे जा पाए। दिल्ली कंस्टेंटली वी लुक एज अ यंग एंटरप्रेन्योरशिप और यंग स्टार्टअप, वी लुक एज अ अपॉर्चुनिटी।
1: दिल्ली हमारी राजधानी है लेकिन उसका मतलब इससे कहते मतलब कि पोल्यूशन सबसे ज़्यादा दिल्ली में है वर्ल्ड में भी, इसमें भी। सो लाइक हम क्या सोचते हैं अगर हम दिल्ली को क्रैक कर पाए पोल्यूशन कंट्रोल में बाय आवर प्रोडक्ट by support of all the government and all the initiatives, agar hum Delhi ko crack karte, it will be a milestone for everyone. We are here in Delhi as in ISBT of Anand Vihar Terminal and here is our demo prototype where we are keeping this for like at least 1 month and all, like where we got tested positive for like minimizing the PM2.5 of carbon particle.
0: Not only हम एक हवा को साफ करें बट हम एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। बेसिकली मेरा जो फंडामेंटल है, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जो ब्रेन फटीग होती है, जो स्टूडेंट का कंसंट्रेशन होता है, बेसिकली वो उसकी वजह से नहीं होता है कि वो बहुत देर तक पढ़ रहा है, बहुत देर तक वो बैठा है एक जगह। द प्रॉब्लम इज कि ब्रेन हमारा काम मतलब स्लो डाउन हो जाता है जस्ट बिकॉज उसके पास ऑक्सीजन इतनी मात्रा नहीं होती है। इंडोर के लिए कॉन्सेप्ट बनाया था ये, बट उसके बाद ये आउटडोर के लिए भी हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इंडोर के लिए जब हुआ था तो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करें, ना कि एक केवल एक ऑक्सीजन एक एयर फिल्टरेशन हो। आपके घर में एसी है, वेल एंड गुड, उसको एयर तो साफ हो रहा है, बट वॉट इफ अगर हम एक एड ऑन करें, दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ही इस चीज़ को लाने के लिए ये काई टेक्नोलॉजी आई, और काई बहुत ही हिंदी नेम है, हमारे इंग्लिश हिंदी दोनों में सुटेबल होती है।
1: हमारा जो एनवायरमेंट का पोल्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड कौन फिल्टर करता है, पेड़ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी भी जो है वो भी उसी इस पर वर्क करता है। अगर आप अभी हमारे घर पे एयर प्यूरीफायर रखते हैं, इट विल ओनली फिल्टर द एयर, एज सिद्धांत ने मेंशन किया, उसी पे एयर प्यूरीफायर करेगा, नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन लेवल बढ़ रहा है, ग्रीनहाउस आउटपुट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसका सोल्यूशन कहाँ पे है? सो हमने ऐसा डिजाइन किया है कि अगर हमको प्यूरीफाई करना है, सो वाई नॉट वी एडेप्ट द क्लाइमेट टेक, मतलब जो भी नेचुरल जो उसमें एनवायरमेंट में है उसी को एडेप्ट क्यों ना करें। तो उसमें हमने जो रिसर्च किया, देन वी गॉट टू नो डैट मतलब कि एल्गी जो है, एल्गी तो नेचुरली फिल्टर करते हैं और नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है एंड ऑक्सीजन एक्सहेल करता है जो वाटर है इसमें। हमने उसमें एक स्पेसिफिक एल्गी मिक्स किया है एक प्रॉपर मतलब फॉर्मेशन में,
0: एयर प्रॉपरली नॉर्मली तरीके से आ रही है, हमने पंप लगाया, सो इसको फीड कर रहा है इस रिएक्टर में। सो बेसिकली जो रिएक्टर फीड हो रहा है वो गैसेस हैं, जो पार्टिकल हैं वो पहले ही सेपरेट हो जा रहे हैं, तो जब सेपरेट हो गए वो गैसेस अब जा रहे हैं, तो गैसेस फिर उसमें अंदर जाके रिएक्ट हो रहा है। अभी जो एक इन्फॉर्मेशन आपको जो जनरलिटी मिलेगा कि 10-15 पेड़ों के बराबर है, दैट कैन नॉट बी क्लेम, अभी ऐसे क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज इसकी क्या ऑक्सीजन जनरेशन, वो पूरी टेक्नोलॉजी टेक अलग है। हार्डली इसका कॉस्ट 50,000 से 1 लाख के नीचे रहता है, इसकी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एंड इसको जो सेलिंग कॉस्ट आएगी वो चली जाएगी 1.5-3 लाख तक चली जाएगी एज पर द लॉजिस्टिक। बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हमें मैन पावर देखना होता है, बेसिकली अभी तो हम 8-9 पीपल रन कर रहे हैं जो कोर मेंबर है। आई वुड लाइक टू थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल्यूशन का सोल्यूशन फॉर इंडिया टूडे इनिशिएटिव एंड अगेन दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, वंडरफुल जॉब रेखा मैम एंड मजिंदर सिंसा सर और DPCC POC अहम डोले सर डायरेक्टर एंड नरेश सर एंड लसा कोऑर्डिनेट, संदीप सर, दे ऑल आर कोऑर्डिनेट वेरी वेल. हमने इतने बड़े स्केल पे कभी वर्क नहीं किया, ना कि मैंने कभी ऐसा सोचा, बिकॉज एज अ एकदम यूपी ईस्ट एज अ ऐसे जगह से आना जहाँ पे ऐसे इको सिस्टम नहीं है, और यहाँ तक अचीव करना इट्स वेरी वंडरफुल.
2: And well, severe rainfall across the country that has left several areas badly affected, disrupting normal life and creating serious trouble for local residents. Take a look at this report. Prime Minister Modi's constituency Varanasi is facing severe flooding as the river Ganga continues to swell. The Prime Minister, keeping a close watch on the situation, he has spoken to the DM, taken stock of the flood situation and relief measures. Rising water level of the Ganga has submerged Manikarnika Ghat, causing significant difficulties in conducting cremation. With the lanes leading to the ghat completely flooded, bodies are now being transported by boat to reach the cremation site. CM Yogi Adityanath distributed relief material to 1,000 flood-affected families in Farukabad. Chief Minister said the families who lost their homes will also get land allotment certificates and financial aid from the Disaster Relief Fund. Rising Ganga and Yamuna have flooded the riverfront road in Prayagraj, with water now reaching residential areas as well. The situation has raised concerns among residents, while the administration is closely monitoring the rising water levels. Flooding has severely disrupted normal life in Uttar Pradesh's Fatehpur. Three people have died. 67 houses have been damaged. The administration, meanwhile, has provided compensation to affected families, and rescue operations are underway across the district. In Madhya Pradesh, the flood situation in Chitrakoot has worsened, with strong currents washing away a road connecting several key areas. The road has remained blocked for 3 to 4 days, but barricades or other safety measures are yet to be put in place. Heavy rains that have left several parts of Madhya Pradesh's Satna district waterlogged, with flood water entering homes and covering residential streets. The district administration has deployed SDRF and NDRF teams to carry out rescue and relief operations. The Son River in Bihar is flowing 68 centimeters above the danger mark in Bhojpur, while the Ganga is nearly a meter above the red mark. As a result, parts of the area have faced soil erosion and dozens of roads are submerged. Current of the Ganga has eroded a 350-meter stretch of the marginal embankment in Bihar's Raghopur, a large section that has completely disappeared into the river, while relief and restoration measures are underway. In West Bengal, floodwaters from the rising Damodar have entered homes in Bankura district. Families are struggling even to cook, while boats have become the main way for people to move around and stay connected.

राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, पंचायत आज तक, ब्रज की इस पावन धरा पर आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा आयोजित पंचायत आज तक के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार में हमारे मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, न्यूज डायरेक्टर आज तक श्री सुप्रिय प्रसाद जी, मैनेजिंग एडिटिंग सुश्री श्वेता सिंह जी, मैनेजिंग एडिटर सुश्री अंजना ओम कश्यप जी, आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप को पंचायत आज तक के इस आयोजन को कान्हा की इस धरा पर करने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। पूरी ब्रजभूमि इस समय कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारी में लगा हुआ है। एक उत्सव है, चारों ओर आनंद का माहौल है, हर घर में लोगों के यहां श्रद्धालु जनों के घरों में आनंद जैसा उत्साह का वातावरण है और उस उत्साहपूर्ण माहौल में पंचायत आज तक ने इसी वृंदावन की धरती पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। मित्रों, मानव जीवन की वास्तविकता क्या है, और जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले इसी पावन धरा पर जन्म लेकर के जीवन के उन रहस्यों को हम सबके सामने उद्घाटित करके रखा है। और जीवन का उद्देश्य क्या है? सत्य है, धर्म है, लेकिन इनका मार्ग कर्तव्य से होकर के जाता है, या प्रेरणा इसी धरा की देन है। और उसी धरा पर आज हम सबको पंचायत आज तक के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप की को इसके लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न हम सबके सामने आता है, क्या आज उत्तर प्रदेश में जो उत्साह का वातावरण है, उत्सव का वातावरण है, आप ब्रजभूमि में ही देखें, मथुरा वृंदावन में जन्मोत्सव का माहौल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, बरसाना में रंगोत्सव होली के अवसर पर, ब्रज रज महोत्सव यहां के उत्सवपूर्ण वातावरण के साथ ही यहां की पंचकोशी परिक्रमा,
गोवर्धन परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा। यह उत्सवपूर्ण वातावरण, इसका जो पोटेंशियल है, इसकी जो संभावनाएं हैं और इसकी जो चुनौतियां हैं, क्या 2017 के पहले संभव था? आज हम जहां खड़े हैं, याद करिए, ये वही धरा है जहां पर जून 2016 में चौहार बाग की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। उनतीस लोग मारे गए थे, उपद्रव का तांडव था।

आज वहां पर एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जहां पहले हजारों की संख्या में श्रद्धालु आने को तैयार नहीं था। उस धरती पर आज के दिन पर गत वर्ष अकेले इस ब्रजभूमि पे 11 करोड़ श्रद्धालु पर्यटक के रूप में आया था। और मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 2025 में 156 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ने का एक नया अनुभव देश और दुनिया को करवाया था। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन उसी बदलाव का परिणाम है जो चुनौती से भागता नहीं, उन चुनौतियों में संभावनाएं देखता है और उन संभावनाओं को समाधान तक पहुंचा करके सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित करता है। जो लोग चुनौती को समस्या मानते थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश को कर्फ्यू ग्रस्त बनाया था, दंगा ग्रस्त बनाया था, अराजक बनाया था, उपद्रव प्रदेश में बदल दिया था। जिन लोगों ने चुनौती को एक संभावना के रूप में लिया, उन्होंने उन संभावनाओं में सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित भी किए। और वही प्रगति आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको दिखाई दे रही है। मैं मानता हूं किसी भी क्षेत्र में हम आज जाएंगे, यूपी के अंदर किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, पिछली सरकारों ने जनसंख्या को एक चुनौती माना। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य वैसे ही नहीं बना है, क्योंकि यहां जनसंख्या सबसे बड़ी थी, कृषि का क्षेत्रफल सबसे बड़ा था, आबादी बड़ी है तो युवा बड़े होंगे, सबसे ज्यादा युवा आबादी यूपी के पास, इतिहास और संस्कृति की सबसे समृद्ध परंपरा यूपी के पास, धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए समृद्ध जो पर्यटन के केंद्र हैं उसकी असाधारण क्षमता भी उत्तर प्रदेश के पास, और देश का सबसे बड़ा बाजार होने के साथ साथ एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद था। हमारे पास वह सब कुछ था जो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर केवल जनसंख्या की दृष्टि से ही नंबर एक बनाने की सामर्थ्य नहीं रखता था, हर दृष्टि से वह यूपी को नंबर एक पर करने की सामर्थ्य रखता था। लेकिन जिन लोगों ने इस चुनौती को समस्या माना, उन्होंने उत्तर प्रदेश की दुर्गति कर दी। और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की इस चुनौती में संभावनाएं देखी, उन्होंने सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित किए। हम लोगों ने उन संभावनाओं को आज एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। आज हम मानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी, यह हमारे लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में उपयोगी है। हमारे पास युवा शक्ति है, युवा की इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ना,

0: उस स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ उसको जोड़ना। और पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने सफलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाने का काम किया। देश की सबसे उर्वरा भूमि यूपी के पास थी, इसलिए सरकारें अन्नदाता किसानों को एक चुनौती मानती थी और एक समस्या मानती थी। परिणाम था किसान आत्महत्या करता था, परिणाम था किसान के सामने प्लान करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचा था, किसान हताश और निराश था। हमने उसे समस्या नहीं माना, हमने अन्नदाता किसान को, उसकी समस्या को समझा, उसका समाधान निकालने का प्रयास किया। आज आप कह सकते हैं कि यूपी के अंदर कृषि विकास की दर 8% से बढ़कर के 21% हो गई है और भारत की कुल कृषि लैंड जो योग्य भूमि है उनमें से यूपी का शेयर केवल 11% है, लेकिन उस 11% कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश आज के दिन पे 21% खाद्यान्न उत्पादन करके देश का पेट भरने का काम भी कर रहा है। इसके लिए प्रयास प्रारंभ करने पड़े थे। दशकों से लंबी सिंचाई की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया, किसानों को आधुनिकता के साथ जोड़ा गया, शासन की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का काम हुआ, उनकी उपज के लिए बाजार तक पहुंचाने के लिए कनेक्टिविटी दी। और जब सरकार और किसान एक साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाए, उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों ने उत्तर प्रदेश की कृषि उपज को 8% से बढ़ाकर के 18% बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। आपके सामने मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। 2007 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर 29 चीनी मिलें बंद हुई। इस दौरान अन्नदाता जो गन्ना किसान थे उनके गन्ना मूल्य का भुगतान भी अलग अलग चीनी मिलों में बाकी थे। चीनी उद्योग जर्जर स्थिति में था। 17 में जब सरकार आई थी, हमारे सामने सबसे ज्वलंत मुद्दा गन्ना किसानों का भी था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के दिन पे हम उत्तर प्रदेश के अंदर 122 चीनी मिलें चला रहे हैं। कोई चीनी मिलें पिछले 9.5 वर्ष के अंदर कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई। हम अब तक 3,26,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में कर चुके हैं। और आज के दिन पे गन्ना किसानों का जो प्रति कुंटल का दाम प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है, वो 400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से करवा रही है। 122 चीनी मिलों में से 110 चीनी मिलें ऐसी हैं जो चौथे दिन गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही। अब उसमें 4 साल नहीं लग रहे हैं, 9 साल नहीं लग रहे हैं, हर चौथे दिन उनका गन्ना मूल्य का भुगतान उनके खाते में होता है। 10 चीनी मिलें ऐसी हैं जिनमें समस्याएं हैं, उनका भी समाधान निकाला जा रहा है। लेकिन मैं मानता हूं जहां चाह वहां राह। अगर सरकार ठान ले कि हमें ये करना है, उस कार्य को होने में देर नहीं लगती है। और यही पिछले 9.5 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी समाज हो, कोई भी सोसाइटी हो, अगर वह अपने कारीगर और हस्तशिल्पियों का सम्मान नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब उसने वहां के उद्यमिता को हतोत्साहित करके विकास को एक प्रकार से वहां की व्यवस्था कुंद कर रही है। उत्तर प्रदेश के पास पहले से ही इसकी व्यापक संभावनाएं थी। उत्तर प्रदेश इस देश से अत्यंत समृद्ध था। सत्रह में जब हम लोग आए हमारे सामने चुनौती थी, क्या होगा? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए हमारे जो क्षेत्र हैं उनमें से ज्यादातर कारीगर, ज्यादातर हस्तशिल्पी, ज्यादातर उद्यमी प्लान कर चुके थे, हताश और निराश बैठे थे। कहीं मार्केट का भाव, कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भय, कहीं सरकार की उदासीनता, कहीं सुविधाओं का और कनेक्टिविटी का अभाव। उस हताशा और निराशा को देख करके हमें भी लगता था क्या हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। और उसी समय जब हम लोगों ने इसका सर्वे करवाया था तब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के एमएसएमई उद्यम को एक पहचान देने का काम किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यहीं से प्रारंभ होता है। फिरोजाबाद का ग्लास, मुरादाबाद का ब्रास, अलीगढ़ का हार्डवेयर, लखनऊ की चिकनकारी, मेरठ का स्पोर्ट्स आइटम, सहारनपुर की लकड़ी की कारीगरी, भदोई का कालीन, वाराणसी की रेशम की साड़ी, गोरखपुर का टेराकोटा, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, 57 जनपदों में जब हमने इसका सर्वे करवाया तो यूनिक प्रोडक्ट हमें मिला था। तो मैंने उस समय के अपने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा इसका एक सेल गठित करो, एक टीम इसके साथ लगाओ और हर जिले की एक प्रोडक्ट को, जो शेष 18 जनपद हैं इनको भी एक पहचान के साथ जोड़ो और फिर 75 जनपदों के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट हमने दिया। जैसे मथुरा में हम हैं तो मथुरा में ठाकुर जी की पोशाक को हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का हिस्सा बनाया था। और मुझे देख करके प्रसन्नता होती है। अभी मैं इससे पहले एक कार्यक्रम में था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कैसे यहां की पोशाक को आज देश और दुनिया के अंदर एक पहचान मिली है। और हमने यहां के केवल ठाकुर जी की पोशाक को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में नहीं लिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद अब हमारी सरकार ने काम शुरू किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन में। और वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन में मथुरा के लिए हमने दिया है मथुरा का पेड़ा। राधे राधे। मैं देख रहा था, अभी एग्जीबिशन को मैं देख रहा था, उसमें सारी चीजें मुझे वहां दिखाई दे रही थी और उन बहनों के चेहरे पर खुशी मैं देख रहा था जो ठाकुर जी की पोशाक के साथ उस प्रदर्शनी में मौजूद थी। मैं उनसे पूछ रहा था कितने का आप कमाई कर लेते हैं। कोई महिला स्वयं से भी समूह कहती थी कि हम 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, कोई कहती थी कि हमारा 10 करोड़ का टर्नओवर है। कोई कल्पना करता था? 17 के पहले कोई इसकी कल्पना करता था? लेकिन अब यूपी के अंदर ये सब संभव है। सरकार ने उनके लिए बाजार उपलब्ध करवाया, सरकार ने उन्हें टैक्स से बचाया। जब सरकार संवेदनशील होती है तो अपने कारीगरों को उद्यमी बनाने में उसे देर नहीं लगती। हमने उनके लिए बाजार के द्वार खोले, उनके उद्यम तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी दी, उनके लिए विद्युत की आपूर्ति करवाई, उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, उनको पैकेजिंग के साथ जोड़ा, उनको डिजाइन के साथ जोड़ा। आज परिणाम है कि यूपी का प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पे दुनिया में छा गया है, चारों ओर इसकी गूंज है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 25-26 में हमने 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट भी किया है यूपी से। मैं नेशनल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूं। इतने का एक्सपोर्ट अकेले यूपी ने किया है एमएसएमई से। मित्रों, यूपी के पास वह सब कुछ है उसे सम्मान और स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करके देश के अंदर एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। यूपी को अचानक वैसे ही भारत का हृदय स्थल नहीं कहा गया, यूपी के पास उस प्रकार की संभावनाएं थी, पहले भी थी, आज भी है। भारत की विरासत से जुड़े हुए सभी स्थल, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी तीर्थ स्थल, सुखतीर्थ, बौद्ध तीर्थ स्थल, जैन तीर्थंकरों से जुड़े हुए सभी स्थल, ये सब तो यूपी के पास है। दुनिया के अंदर सबसे बड़े, सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल बौद्ध तीर्थ स्थल यूपी के पास। भगवान बुद्ध ने अपना बचपन जहां व्यतीत किया था वह कपिलवस्तु यूपी में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जिस धरती पर दिया था वह सारनाथ यूपी में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस स्थल पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती यूपी में। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जिस पावन भूमि पर लिया था वह पवित्र भूमि कुशीनगर भी यूपी में। कौसाम्बी, ये भी बुद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। संकिसा, ये भी यूपी के अंदर। 24 जैन तीर्थंकरों में सर्वाधिक जैन तीर्थंकर यूपी के अंदर पैदा हुए, भगवान ऋषभ देव से लेकर के। एक लंबी परंपरा है जिनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत की सनातन आस्था का एक प्रदेश, जिस प्रदेश ने भारत की विरासत को आगे तो बढ़ाया ही, लेकिन ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश ने देश की स्वाधीनता आंदोलन में भी एक नई पहचान देश को दी थी। याद रखिए, उत्तर प्रदेश के बलिया से, बलिया में जन्म लिए मंगल पांडे ने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की चिंगारी जलाने का काम बैरकपुर में किया था। 1857 में उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में ये लड़ाई आगे बढ़ती रही। उत्तर प्रदेश में ही गोरखपुर में चोरी चोरा, लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन जैसी इतिहास प्रसिद्ध वे घटनाएं होती हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम भी किया था, ये वही धरती है। लेकिन उस धरती के सामने आजादी के बाद जो संभावनाएं आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए थी, उन संभावनाओं को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तिलांजलि देकर के कुंद किया गया, उन्हें अपमानित किया गया। यहां के पोटेंशियल को परफॉर्मेंस के रूप में बदलने की बजाय उसे प्लानवादी बनाने का प्रयास किया गया। दुष्परिणाम क्या था? दशकों तक यूपी के सामने बीमारू राज्य के रूप में अपनी पहचान को छुपाने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। यहां का युवा अपनी पहचान को छुपाता था, यहां का व्यापारी अपनी पहचान को छुपाता था, यहां का हर नागरिक जब यूपी के बाहर जाता था तो अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। गलती उस युवा की नहीं थी, गलती उस बेटी की नहीं थी, गलती उस व्यापारी या उस उद्यमी की नहीं थी। बीमार यूपी नहीं था, यूपी में तो सब कुछ था। यहां संभावनाएं थी, यहां विरासत थी, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि थी, सबसे अच्छा जल संसाधन था, लेकिन योग्य नेतृत्व का अभाव था। बीमारू उत्तर प्रदेश नहीं था, बीमारू मानसिकता थी जो 2017 के पहले यूपी में शासन कर रही थी। वह बीमारू थी, वह बीमार थी, इसलिए उसने यूपी को बीमारू बना दिया। उनकी नीति बीमार थी, उनके क्रियाकलाप बीमार थे, इसलिए यूपी बीमारू बना। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यूपी अब बीमारू नहीं है। यूपी भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में आज तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हमने यूपी को बॉटम थ्री से टॉप थ्री इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूं इस बात को, ये डबल इंजन सरकार की ताकत है, जिसे हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस यूपी के बारे में ये चर्चाएं चला करती थी, यूपी में निवेश कौन करेगा, वहां सुरक्षा नहीं, और स्वाभाविक भी निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा। निवेश की पहली शर्त होती है सरकार की नीति क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है। निवेश की पहली शर्त होती है किसे सिंगल विंडो की सुविधा चाहिए, एक फाइल 56 टेबल में घूम करके नहीं आएगी, एक सिंगल विंडो की सुविधा उसे चाहिए। दुर्भाग्य से 2017 तक इस सुविधा यूपी के अंदर लोग पैदा नहीं कर पाए। यूपी का कल्चर किस रूप में इन्होंने खड़ा किया, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहां माफियाओं को, दंगाइयों को, पेशेवर अपराधियों को पाला, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे, वही लोग यूपी के बीमारूपन के कारण भी थे। यूपी के निवेश के विरोध, यूपी में निवेश के विरोधी भी थे, यूपी में पर्यटन के विरोधी भी थे, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे, और उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी सबसे बड़ी डकैती डालने का काम ये वही लोग करते थे, ये वही लोग करते थे। 2017 के पहले यूपी के अंदर कोई नौकरी निकलती थी, कोई भी नौकरी निकलती थी, विज्ञापन जारी हुआ तो खेल प्रारंभ हो जाता था। सेफाई सिंडिकेट ये महाभारत के रिश्तों का सबसे अच्छा उदाहरण है। महाभारत के सारे रिश्ते इस परिवार में मिल जाएंगे, सिंडिकेट के अंदर मिल जाएंगे। वहां शकुनी भी हैं, वहां पर वे सभी पात्र हैं, कोई दुर्योधन है, कोई दुशासन है, वे सभी पात्र मिल जाएंगे। और ये सभी पात्र मिलकर के यूपी के अंदर फिर युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ कर देते थे। हर युवा चिंतित होता था, पहले परीक्षा के, पहले विज्ञापन के बारे में, फिर परीक्षा के बारे में, फिर परिणाम के बारे में, फिर पोस्टिंग के बारे में, और फिर आगे जो खेल होता था वह भी यूपी के अंदर हम सब उस रूप में देखते आए हैं। मित्रों, 2017 के पहले अगर उन्होंने ईमानदारी के साथ यूपी के अंदर उन नौजवानों के लिए उस प्रकार के अवसर दिए होते, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां यूपी के अंदर कभी नहीं आती। स्कूल कॉलेजेस की स्थिति क्या थी? उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार का माहौल हो चुका था? बेसिक शिक्षा में जर्जर भवन स्कूल के, विद्यालय का भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है तो छात्र भी नहीं होते थे। यूपी के अंदर बालक बालिकाओं के लिए ड्रॉप आउट रेट 19 से 20 फीसदी था, ये केवल स्कूली शिक्षा में। 17 में जब मैं आया तो मैंने पूछा, मैंने कभी इतना ज्यादा बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, क्या कारण है? बहुत सारे लोगों ने कहा इसका कारण है कि लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। क्यों नहीं भेजना चाहते? साहब, उनकी प्रायोरिटी नहीं कि बेटी स्कूल पढ़े या बच्चे स्कूल पढ़े। मैंने कहा ये कोई कारण नहीं होगा। मैंने प्रदेश का दौरा किया, पूरे प्रदेश भर का दौरा करने के बाद मैं इस बात को मानता था कि बेसिक शिक्षा परिषद के उन स्कूलों में जो बच्चे आते भी थे, नंगे पैर आते थे, फटे हुए कपड़े पहन करके आने के लिए मजबूर थे, नंगे पैर चलते थे, स्कूल में संसाधन नहीं थे, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट अलग अलग नहीं थे, पेयजल की सुविधा नहीं थी, अपने घर से ही टाट लेकर के आते थे, उसमें बैठने के लिए मजबूर होते थे। मैंने 2017 में ऑपरेशन कायाकल्प के नाम पर एक अभियान चलाया और मैंने हर जनप्रतिनिधि से इस बारे में अनुरोध किया कि आप एक एक विद्यालय को गोद लो। पुरातन छात्रों से भी मैंने अपील की कि आप भी एक एक संस्था को गोद लो। सभी अधिकारियों से मैंने कहा एक एक विद्यालय गोद लो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 146,000 जो कुल बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं उनमें से 136,000 का हमने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उनके क्लासरूम की व्यवस्था दुरुस्त की, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट दिए, पेयजल की सुविधा दी, डिजिटल लेबोरेटरी दी, स्मार्ट क्लास दिए, फर्नीचर उपलब्ध करवाए। और फिर मैंने शासन की ओर से कहा कि भाई हर बच्चे को हम 2 यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स देंगे, शूज देंगे, सॉक्स देंगे और स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के दिन पे हमारी सरकार 1,60,00,000 बच्चों को इस सुविधा उपलब्ध करवा रही है। ड्रॉप आउट रेट जो 19 से 20 फीसदी था, मैंने जब इसका सर्वे करवाया AI टूल के माध्यम से, फिर इसके एनालिसिस करवाई, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब मैंने पूछा कि आखिर क्या विद्यालय दूर होने के कारण क्या ये बच्चे स्कूल नहीं आते थे या स्कूल छोड़ देते थे? और सारे कुछ और भी कारण थे, कहीं शिक्षक नहीं थे, कहीं सुविधा नहीं थी, कहीं। लेकिन उनमें से एक कारण ये भी निकला था कि बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट अलग अलग न होने और पेयजल की सुविधा न होने के कारण खासतौर पर बेटियां स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती थी। आज मुझे प्रसन्नता है कि ड्रॉप आउट रेट को हम 19-20 फीसदी से घटा करके 3% से नीचे लाने में हमने सफलता प्राप्त की है। हमने स्कूल कॉलेज कोई स्कूल बंद नहीं किया, हमने उसको अपग्रेड किया है, अपग्रेड किया है। जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर, कस्तूरबा गांधी विद्यालय 6th class से लेकर 8th class तक चलते थे। गरीब परिवार की बेटियों को वहां पढ़ाया जाता था। कुल 446 विकास खंडों में व्यवस्था चल रही थी। हमने कहा 8th के बाद ये बेटियां क्या करती हैं, तो बताया गया कि ज्यादातर बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो हमने कहा अगर इसी को हम 12th तक कर लें, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा शिक्षक देने पड़ेंगे, शासन से कुछ और सुविधाएं मिल जाएंगी, कम से कम ये बच्चियां पढ़ तो लेंगी। दूसरा, यूपी में 825 विकास खंड हैं, इन 825 विकास खंडों में क्यों नहीं ये विद्यालय बन जाते हैं? पैसा हमने दिया और मुझे प्रसन्नता है कि सभी 825 विकास खंडों के लिए हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की, उसको प्रारंभ किया और उसे 8th से 12th तक किया। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोलती है कि स्कूल बंद हो गए, उसी बात को कहते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि वो बंद नहीं हुए, बल्कि उसको अपग्रेड किया गया है। अब उसको 6th से लेकर 12th तक क्या किया गया है, न कि उसको, यानी उनको लगता है कि 8th तक ही रहना चाहिए था, 8th तक ही रहना चाहिए था। हमने कहा भी 8th तक का नहीं, उसको 12th तक ही नहीं करेंगे, अब हम एक नया मॉडल लेके आए हैं। वह मॉडल है एक PM श्री विद्यालय का और दूसरा CM कंपोजिट विद्यालय का। CM कंपोजिट विद्यालय में 1st class से लेकर 12th class तक के इंटीग्रेटेड कैंपस हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। एक ही कैंपस में लगभग 15 acres क्षेत्रफल में सभी प्रकार की सुविधाएं बच्चों के लिए होंगी, जहां कम से कम 1500 से 2000 बच्चे होंगे और कम से कम 100 से लेके 120 शिक्षक भी होंगे जो अलग अलग डिसिप्लिन से जुड़े हुए होंगे और वे उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पहली बार हुआ है, मॉडल देखना हो शिक्षा का तो PM श्री विद्यालयों को देखें, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को देखें, CM कंपोजिट विद्यालय को देखें और श्रमिकों के बच्चे भी, मजदूरों के बच्चे भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के विद्यालयों में अध्ययन कर सकते हैं। अटल आवासीय विद्यालयों में जाकर के देखें कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर एक कांग्रेसी और सपाई कभी देख पाएंगे तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे कि वास्तव में ये क्या यूपी के अंदर हो रहा है। जिन्होंने अच्छा किया नहीं, वे अच्छा देख भी नहीं सकते और यह इनकी सबसे बड़ी समस्या है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है और इसीलिए आपने देखा होगा कि इन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर जो पाषाण युग लेके आए थे, उसी पाषाण युग की कल्पना को लेकर के आज भी ये क्या बात करते हैं। आपने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के कुछ वचनों को सुना होगा जो उनके संस्कार के अनुरूप ही होता है। उनके मुंह से चवन्नी और कुत्ता जैसे शब्द निकले थे। दुनिया एजुकेशन को बेहतर बनाने में रुचि ले रही है, स्किलिंग को नया आयाम दे रही है, यही डिपटेक मेटेक इन पे चर्चा कर रही है और ये लोग अपनी ही पार्टी के लोगों को कुत्ता और बिल्ली बना रहे हैं। लोकतंत्र का इससे बड़ा उपहास मित्रों दूसरा नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में जनता को हम जनार्दन कहते हैं और समाजवादी पार्टी अपने ही नेताओं को कुत्ता बिल्ली बना करके किस रूप में लोकतंत्र का उपहास उड़ा रही है। कैसे एक केंद्रीय मंत्री के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया किस प्रकार की हल्की बातें करते हैं, या इनकी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो उन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर किया था। और मेरा मानना है यही वो मानसिकता है जो इतिहास के शहीदों को और बलिदानियों को कभी सम्मान नहीं दे पाई। इन लोगों ने, मुझे याद है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं एक बार दिल्ली के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बैठा था। उस समय समाजवादी पार्टी के शिक्षा मंत्री अचानक आ गए, तो हम लोग एक ही जो उनका रिटर्निंग रूम था उसी में बैठे थे। तो उसी दिन वे गोरखपुर के एक कार्यक्रम में थे। गोरखपुर आप जानते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बलिदानी भूमि भी है। गोरखपुर में ही गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पे एक पार्क का उद्घाटन था, तो पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री। और जब उनको भाषण देने के लिए वे गए तो उन्होंने मंच से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं लिया। उन्होंने इस बात को कहा कि साहब मुझे बिस्मिल्ला साहब के जन्मदिन पर आकर के खुशी हुई। मंच से एक सज्जन ने कहा कि भाई ये बिस्मिल्ला साहब नहीं है, ये सहनाई वादक के उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब नहीं है भाई, ये तो क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं। कहा कि तुम भाजपाई हो इसलिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले रहे। ये उस समय के शिक्षा मंत्री बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के। तो जिस व्यक्ति को क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सहनाई वादन के उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के नाम में ही जिनमें अंतर महसूस न होता हो, वे उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा को कहाँ ले गए होंगे आप सहज कल्पना कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हर नौकरी में सेंध लगाना भी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको उन्होंने अपने कालखंड के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया था और इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। जो उस समय जैसी व्यवस्था थी वैसे चल रहा था, चारों ओर अराजकता थी। योग्यता से ज्यादा पर्ची को महत्व दिया जाता था, विवेक से ज्यादा उस समय प्रदेश के अंदर फतवा को महत्व दिया जाता था। और भारत की विरासत की बजाय उस समय एक परिवार की चाटुकारिता को महत्व दिया जाता था। आज मैं आप सबको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश उस दौर से निकल चुका है और आज मैं कह सकता हूं 9.5 वर्ष में आपने देखा होगा, अब यहां पे पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं है। ये जो होटल बना है ना, ये होटल पॉलिसी पैरालिसिस का ही शिकार हुआ था। इस क्षेत्र का पहला 5-स्टार होटल है। मैं यहां ब्रजतीर्थ विकास परिषद का गठन होने के बाद जब पहली बार आया था, ढेर सारे प्रस्ताव यहाँ पेंडिंग पड़े हुए थे। मैंने कहा भी क्यों पेंडिंग पड़े हुए हैं? ठीक है साहब, मैंने कहा ठीक है साहब, नहीं 3 दिन के अंदर मुझे निर्णय करके बताओ और नहीं तो बोरिया बिस्तर बांधो। एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के दायरे में कार्य करो। और मुझे प्रसन्नता है विवांता के नाम पर ये ताज ग्रुप का एक बेहतरीन 5-स्टार होटल
1: आज यहां श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ है। मित्रों, निर्णय लेने की सामर्थ्य, निवेश के लिए आज 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हम लोगों ने दी है। कोई पिक एंड चूज नहीं होगा, ये मेरा है, ये पराया है, ये नहीं होगा, सब हमारे हैं। उसके अनुरूप हमने पॉलिसी बना दी, पॉलिसी का जो पालन कर रहा है आप निवेश करिए, गवर्नमेंट की इंसेंटिव को लीजिए, कहीं कोई भेदभाव नहीं, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ डीबीटी के माध्यम से, ये सारी सुविधा यूपी के अंदर मौजूद है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, स्किल है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी है। आप सोचो 9.5 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं, देश के अंदर किसी राज्य में इतनी नौकरी कभी नहीं, और यहां पे अभी श्री अंजना ओम कश्यप जी जो बात कह रही थी कि पर्चा लीक और पर्ची लीक, जो लोग पर्ची लीक कराते थे वही पर्चा लीक भी कराते थे। अब यूपी में पर्चा लीक नहीं होता है, क्योंकि पर्चा लीक करने वाले को मालूम है कि तो जेल तो जाएगा ही जाएगा, बाप दादों की पूरी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवा करके सड़कों पे कटोरा लेकर के घूमने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमने 2020 में ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कानून बनाया है कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। यही कारण है जब सरकार की नीयत ठीक होती है, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल होता है। हमने 9.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का जो एक वातावरण दिया, 65 लाख नौजवानों को इसके माध्यम से उन्हीं के जनपद या उसी के प्रदेश में हमने उसे नौकरी दी है। और एमएसएमई के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हमने यूपी के अंदर 3.25 करोड़ से अधिक लोगों को प्रदेश के अंदर एमएसएमई उद्योग के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। जिले 25 हैं, लेकिन आज के दिन पे मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर आप 79 यहां के प्रोडक्ट हैं जिसको हम जीआई टैगिंग कर चुके हैं, यानी वह ग्लोबल मार्केट के लिए अब वह अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। और यह उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर इन सभी चीजों में सफलता प्राप्त की है। आज मैं मान सकता हूं कि यूपी के लिए बेहतरीन अवसर है हमारे यहां नौजवानों के लिए। हर जनपद में हम एक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन की स्थापना के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इन सभी पे हमारे हर जनपद में इसकी ट्रेनिंग की बेहतरीन सुविधा, हमारी वोकेशनल एजुकेशन में भी और टेक्निकल एजुकेशन में भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। अटल टिकरिंग लैब के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी हमने अपने छात्रों के लिए ये सुविधा माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में उसको एक आज की इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का उसे कार्य किया है। ये नया भारत का नया यूपी है, ये अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, तो आधुनिक विकास को भी अपने साथ पूरी मजबूती के साथ लेकर के चलता है। अब यूपी बीमारू नहीं है, अब वो यूपी नहीं है जिसकी पहचान गड्ढा युक्त सड़कों से होती थी, वह यूपी नहीं है जिस यूपी की पहचान होती थी कि जहां से सायंकाल होते ही अंधकार प्रारंभ हो जाए, वह यूपी का सीमा है। अब यूपी की पहचान देश के अंदर एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क किसी राज्य के पास है तो वह यूपी है। 60% एक्सप्रेसवे हमारे पास हैं यूपी के पास। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, मेट्रो की सुविधा सबसे ज्यादा सिटी के अंदर चलने वाली है वो यूपी के अंदर। 7 सिटी में वर्तमान में हम मेट्रो की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा संचालित कर रहे हैं। भारत की पहली रैपिड रेल यूपी में, भारत की पहली इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में यूपी से प्रारंभ हुआ। एयर कनेक्टिविटी में देश के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट का नेटवर्क किसी के पास है वो यूपी के पास। 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ आज यूपी इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र आवागमन के लिए माध्यम नहीं है, ये केवल हमारी गति को तेज करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी गति के साथ साथ आर्थिक प्रगति को भी एक नए आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य इस अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोगों ने यूपी के अंदर किया है। और मित्रों, उन्हीं सब बातों को लेकर के आज जब मैं यहां पे आया हूं, आपने देखा होगा लाखों लोग इस ब्रजभूमि में वर्तमान में आए हैं, क्योंकि कल मथुरा के लल्ला का जन्मदिन है। चारों ओर उत्साह का वातावरण है। हर घर, हर कस्बा, हर वार्ड, हर क्षेत्र, चारों ओर एक धूमधाम है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। 2017 के पहले जन्माष्टमी के आयोजन को थाने, यानी एक ही आयोजन होता था जो थानों में होता था और जेलों में होता था, उसको समाजवादी पार्टी ने बैन कर दिया था, कावड़ यात्रा को रोक दी थी, जन्माष्टमी के आयोजन को इन्होंने रोक दिया था। मैं 17 में जब आया तो मैंने पहले देखा कि कावड़ यात्रा, मैंने पूछा भाई कावड़ यात्रा क्या तैयारी है, जब हमारे अधिकारी अन्य राज्यों के साथ, क्योंकि 5 राज्य उसके साथ जुड़ते हैं, यूपी के साथ उत्तराखंड भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा है, राजस्थान है, हिमाचल है, पंजाब है, सभी जगह के श्रद्धालु आते हैं, तो इनके साथ एक अंतर्राज्यीय बैठक भी होती है, इंटर स्टेट जो बैठक होती थी उसमें हमारे अधिकारी गए थे। मैंने कहा क्या तैयारी है, उन्होंने कहा साहब जो गत वर्ष का जियो है हमने उसको ही जारी करने के लिए कहा। मैंने कहा क्या है गत वर्ष का जियो, उन्होंने कहा साहब डीजे नहीं बजेगा, घंटा संघ घड़ियाले सब नहीं बजेंगे। भाई हमने कहा तो फिर क्या है, ये शिव की यात्रा है या कोई सौ यात्रा निकल रही है। मैंने कहा बैठक मेरे सामने कराओ। मैंने अगले सप्ताह बैठक करवाई, सभी राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। मैंने कहा भाई देखो यूपी के अंदर डीजे भी बजेगा, संघ घड़ियाल सब बजेंगे, हाँ कावड़ की एक ऊंचाई हम सुनिश्चित करवाएंगे, हम सुविधा देंगे, सुरक्षा भी हम देंगे, और भक्तिमय माहौल में कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए, जो सुविधा चाहिए हमसे लो। अधिकारी मुझे डरा रहे थे, कह रहे थे साहब उपद्रव हो जाएगा। हमने कहा भी कोई उपद्रव नहीं होता है, मैं जानता हूं कौन उपद्रवी है और उपद्रवियों को हम ठीक कर देंगे। आपने देखा होगा कोई उपद्रव नहीं। इस वर्ष 5 करोड़ श्रद्धालु थे कावड़ यात्रा में, गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच, एक ही उसमें 5 करोड़ श्रद्धालु कावड़ यात्री थे। रोहेलखंड का दूसरा है, अयोध्या से बस्ती गोरखपुर वाली तीसरी यात्रा चलती है, प्रयागराज से काशी की चौथी चलती है, बुंदेलखंड की अलग है, मैं इनकी काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उन क्षेत्रों में केवल एक ही कावड़ यात्रा में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे, कोई उपद्रव नहीं था, कहीं अव्यवस्था नहीं थी, हर व्यक्ति खुशी के साथ आगे बढ़ रहा था।
0: आप लोगों के उत्सव के इस आनंद को भी छीनना चाहते थे,
1: हमने इसको फिर से पुनर्बहाल कराया, कहा नहीं इसको रोका नहीं जा सकता है। कानून के दायरे में रहकर कि कोई उत्सव मनाता है तो उसको सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको समर्थन करे, उसको प्रोत्साहित करे। और ऐसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी आयोजन भी था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को मैंने कहा भी हर थाने में करो, हर जेल में हम आयोजन करो, हर महत्वपूर्ण स्थल पर होना चाहिए। आप रोकेंगे क्यों और कैसे रोक सकते हैं? हमारे कान्हा तो यहां पे कंसी की ही जेल में पैदा हुए थे, तो क्या उसको हम भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे। कभी वो जेल थी, आज हमारे लिए श्री कृष्ण जन्मस्थली है। और श्री कृष्ण जन्मस्थली देश और दुनिया का लाखों श्रद्धालु आया हुआ है, इसलिए सरकारें उसको समझ नहीं पाई थी, उन भावनाओं को सम्मान नहीं दे पाई थी। और जनता जनार्दन की भावनाओं को जो भी सरकार कुचलने का कार्य करती है, लोकतंत्र उसको कुचल कर रख देता है, उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा कर देता है। और यही इनकी दुर्गति का कारण है। इन्होंने यूपी की इस विरासत को अपमानित किया, इन्होंने अयोध्या को भी अपमानित किया, इन्होंने हमारी इस पावन ब्रजभूमि को अपमानित किया, इन्होंने काशी को भी अपमानित करने का काम किया था। और यही कारण है कि यूपी इन्हें अब स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करने वाला है। यूपी का व्यक्ति अब कर्फ्यू मुक्त और दंगा मुक्त वातावरण का अभ्यस्त हो चुका है। अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। और इस चंगापन को लेकर के अब वह पूरे उत्साह के वातावरण में डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद दिए जा रहा है। एक झूठ 10 बार बोलने से या 100 बार बोलने से वो सच कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। और इस सच को आधी आबादी भी जानती है कि वास्तव में सच क्या है। सच ये है कि उसको सुरक्षा चाहिए, सच ये है नौजवान को अच्छी एजुकेशन चाहिए, स्किलिंग चाहिए, अच्छी एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था चाहिए, उस प्रकार का एक वातावरण उसको चाहिए। उसको आज यूपी के अंदर, इस नए यूपी के अंदर उसे प्राप्त हो रहा है। आधी आबादी के लिए जो वातावरण मिला है, और मैं पंचायत आज तक से कहूंगा, वास्तव में जिन लोगों ने पिछले 9-9.5 वर्ष में आधी आबादी हो या युवा हो, ये आयोजन उनके बीच में होना चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहूंगा। हमारे पास 5 मिल्क प्रोड्यूसर हैं वर्तमान में यूपी के अंदर, ये सभी 2019 के बाद स्थापित हुए हैं। 4 लाख महिलाएं इसके साथ जुड़ी है और ये सभी प्रॉफिट कमा रही हैं। क्या ये काम 17 के पहले नहीं हो सकता था? क्या ये 17 के पहले नहीं हो सकता था? आप झांसी में जाइए, बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर है, 116 करोड़ रुपए का उनका वार्षिक टर्नओवर है। आप आगरा में आइए, एक मिल्क प्रोड्यूसर आपका आगरा क्षेत्र में भी है, बेहतरीन काम कर रहा है। एक लखनऊ में है, एक काशी में, एक गोरखपुर में, और कितना उत्साह है उन लोगों में। जब पहला मिल्क प्रोड्यूसर हमने स्थापित किया था झांसी में, कोविड के ठीक पहले का मामला था, 5 महिलाएं मेरे सामने आई थी, उन्होंने कहा हमें कुछ काम चाहिए। मैं भौचक था, मैंने कहा क्या काम करेंगे आप? उन्होंने कहा हमें कार्य चाहिए। मैंने कहा आपने पढ़ाई कहां तक की है? मैं सोचता था कि पढ़ी लिखी महिलाएं होंगे तो फिर कहीं देखते हैं, कोई व्यवस्था करवाते हैं। तो उसमें उन्होंने जवाब दिया, किसी ने कहा हम 3 पास हैं, किसी ने कहा 4 पास हैं, किसी ने कहा 5 पास है, 5 से ऊपर कोई नहीं था। अब मेरे सामने था कि मैं ना भी नहीं बोल सकता था, लेकिन उस समय हाँ भी नहीं बोल सकता था। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, कुछ हम करेंगे। और तब हमने एक अधिकारी से कहा, मैंने कहा इनके लिए कुछ होना चाहिए, ये कुछ कार्य करना चाहती हैं। फिर उनके साथ बैठ करके तय किया गया क्या काम कर सकती है। पता लगा कि मिल्क कलेक्शन का काम बेहतरीन ढंग से कर सकती है, समूह बना सकती हैं। आज 62,000 बहनें उनके साथ जुड़ी हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, 62,000 सफल कहानी है। मुझे लगता है यही वास्तविक पंचायत का उद्देश्य भी है, ये जाएगा सबके सामने। उस हस्तशिल्पी की कहानी को बताइए, जिस हस्तशिल्पी ने सफलतापूर्वक पिछले 9 वर्ष में एक उद्यमी बनने की यात्रा प्रारंभ की है। 17 के पहले जो हताश था, निराश था, उससे पूछिए आपकी कहानी का राज क्या है, तो बोलेगा यूपी का कानून का राज, जो पहले 17 के पहले अराजकता में बदल चुका था। उन लोगों से बात करिए जिन लोगों ने सफलतापूर्वक 9.5 लाख नौजवानों ने, जिन्होंने यूपी के अंदर बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची और खर्ची के उत्तर प्रदेश शासन की नौकरी प्राप्त की है, तब उनसे, उनके अभिभावकों से पूछिए इसका राज क्या है। वही कहेगा कि पारदर्शी और ईमानदारी पूर्वक की गई उनकी भर्ती, जो सिस्टम प्रदेश के अंदर लागू हुआ है उसका परिणाम है कि आज उन चेहरों पर खुशी आई है जहां तक कभी खुशी नहीं पहुंचती थी। उन लोगों तक जाइए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, सड़क की हो, मेट्रो की हो, रेलवे की हो या रोपवे की हो। कोई सोचता था बरसाना में राधा रानी मंदिर में रोपवे मिलेगी, आज ये संभव हो पाया है, हमारी सरकार ने किया है। आज ये संभव हो पाया है। मंदिर की आस्था, कुछ लोगों को लगती थी कि अनावश्यक है, उन्होंने इसको सांप्रदायिकता के साथ जोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वे भूल गए यह आस्था अर्थव्यवस्था का आधार भी है। अर्थव्यवस्था को कैसे नया आयाम देती है, जब श्रद्धालु आता है, जब श्रद्धालु आता है अकेले नहीं आता है, तब वह फूल पत्ती वाले से भी फूल खरीदता है, माला खरीदता है, पैसा उस माली के घर में भी जाता है, तब वह स्थानीय उत्पाद का भी क्रय करता है, कहीं ठाकुर जी की पोशाक खरीदता है, कहीं पर किसी हलवाई के द्वारा बनाए गए मथुरा के पेड़े को खरीदता है, वह पैसा उस कारीगर के घर में भी जाता है। जब वह एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो स्थानीय रिक्शा में जाता है या टैक्सी में जाता है, उस टैक्सी के ड्राइवर के घर में भी, उस रिक्शा चालक के घर में भी पैसा जाता है। जब वह किसी रेस्टोरेंट और होटल में रुकता है तो किसी रेस्टोरेंट के संचालक को और वहां काम करने वाले लोगों को रोजगार भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। जब वह किसी होटल में रुकता है, यही होटल है, एक 5-स्टार होटल बना है। मैं मानता हूँ, मैं आज पहली बार यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि कम से कम 500 लोग यहाँ रोजगार प्राप्त किए होंगे। इस अकेले एक होटल में 500 लोग यहाँ रोजगार प्राप्त कर रहे होंगे। अगर ये होटल नहीं बनता तो ये 500 लोग कहाँ रोजगार प्राप्त करते। इनकी नियति बन जाती पलायन करने की। ये दूसरे राज्यों में जाकर के अपमानित भी होते, परिवार की चिंता अलग, लेकिन आज उसको चिंता

तब हुआ है, क्योंकि यहां पे ठाकुर बांके बिहारी का यह मंदिर का दर्शन करने के लिए देश और दुनिया का श्रद्धालु आया है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आया है, उसको कहीं सुविधा पूर्ण रहने की व्यवस्था चाहिए, वो सरकार कर रही है। एक कार्य जगह एक है, स्थल एक है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ एक पूरा सिस्टम कैसे कार्य करता हुआ दिखाई देता, ऑटो मोड पर कैसे कार्य करता हुआ दिखाई देता है, और उसकी आधारशिला कोई है, कानून का राज, सुशासन, जहां से प्रारंभ होता है। और मुझे लगता है कि कानून का राज कैसे होता है, उस बेटी से पूछिए किराना की, यानी जिसने अपने बचपन में अपने पिता को खोया है, कौन पूछ सकता उन लोगों से। और इसीलिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है कि नहीं, इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ इसने खिलवाड़ किया है तो इसको जेल या जहन्नुम में से एक जगह पहुंचाना जरूर है, क्योंकि ये इसका हकदार है, क्योंकि इसने जुर्म किया है, वह जुर्म किया है जो किसी अपराध से बड़ा अपराध है, और इसीलिए उस अपराध को सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लिया है। आज मुझे प्रसन्नता है किराना में प्लान नहीं है, और कुछ लोग दुस्साहस किए थे, अभी आपने देखा होगा, लोगों ने प्रयास किया था कि अन्य जगह जैसा अपराध कर लेते हैं वैसे यूपी में कर सकते हैं, गलत फहमी के शिकार थे। ये यूपी है, नए दौर का यूपी है, ये बोलता नहीं है, प्रणाम देता है, प्रणाम देता है। कोई ताकत अजमा के देखेगा तो उसकी ताकत को चकनाचूर करके रख देगा यूपी। यूपी पीछे हटने वाला नहीं है, हर उसको जवाब देने की सामर्थ्य रखता है। और कुछ लोगों ने जो जरूरत की थी अभी हाल ही में उसी केराना की भूमि पर, तो उसका जवाब मिल चुका है, इससे ही बड़ा जवाब मिलेगा। और मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, यूपी आज सुरक्षित है, सुशासन के आनंद का अनुभव कर रहा है, अपने विरासत भी और विकास की यात्रा के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और इस आनंद का अनुभव मुझे लगता है कि कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा युवा भी कर सकता है। आधी आबादी बहनें और माताएं भी कर सकती हैं, अन्नदाता किसान भी कर रहा है, हमारा हस्तशिल्पी कारीगर और वह गरीब भी कर रहा है, जिसको राशन भी मिल रहा है, जिसको आयुष्मान की सुविधा भी मिल रही है, जिसको बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध हो रही हैं, स्कूली शिक्षा भी मिल रही है, और स्किलिंग के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी प्राप्त हो रही है। ये सभी कुछ आज के दिन पे यूपी के अंदर मौजूद है। मैं आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप को, एक पंचायत आज तक के लिए कि उन्होंने किया है, और मैं आपको फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, मैंने अंजना जी को उस समय मैंने कहा था 22-21 में, जब उन्होंने इंटरव्यू 22 में लिया था, तो मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी। सत्ताईस में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी, यूपी का युवा बनाएगा, यूपी की माताएं बनाएंगी, यूपी का अन्नदाता किसान बनाएगा, यूपी का गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यहां का वंचित, यहां का दलित, यहां का पिछड़ा, वह व्यक्ति जिस तक सुविधा पहुंची है, वह उस इस डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी के अंदर बनाने में अपना आशीर्वाद देगा, इसमें कोई संदेह किसी को भी लेस मात्र नहीं होना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं पंचायत आज तक में इस पूरे ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी को।

0: are watching India Today.
1: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Good evening. You're watching News Track with me, Ritanshu Bhattacharya. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has set the tone for the upcoming state poll at Panchayat Aaj Tak's Mathura edition. He's put his government's development report card on the table while making a sharp pitch on law and order and faith. Taking aim at the Samajwadi Party, Chief Minister Yogi Adityanath drew a contrast with Uttar Pradesh before 2017, invoking riots, curfews and violence and claiming that his government has transformed the state's law and order landscape. He summed it up with a slogan, "No curfew, no danga, sab changa." A clear political contrast and an attempt to make law and order a key election issue. But his sharpest attack came on Aastha. Bringing Ayodhya, Kashi and Mathura into his pitch, he has also accused previous governments of ignoring Uttar Pradesh's cultural and religious ethos for the sake of appeasement politics. Over the next half an hour, here are some key excerpts from his speech.
1: कानून के दायरे में रहकर कि कोई उत्सव मनाता है तो उसको सरकार का दायित्व बनता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको समर्थन करे, उसको प्रोत्साहित करे. और ऐसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी आयोजन भी था. श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को मैंने कहा भी हर थाने में करो, हर जेल में हम आयोजन करो, हर महत्वपूर्ण स्थल पर होना चाहिए. आप रोकेंगे क्यों और कैसे रोक सकते हैं? हमारे कान्हा तो यहां पे कंसी की ही जेल में पैदा हुए थे, तो क्या उसको हम भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे. कभी वो जेल थी, आज हमारे लिए श्री कृष्ण जन्मस्थली है. और श्री कृष्ण जन्मस्थली देश और दुनिया का लाखों श्रद्धालु आया हुआ है. पिछली सरकारें उसको समझ नहीं पाई थी, उन भावनाओं को सम्मान नहीं दे पाई थी. और जनता जनार्दन की भावनाओं को जो भी सरकार कुचलने का कार्य करती है, लोकतंत्र उसको कुचल कर रख देता है, उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा कर देता है. और यही इनकी दुर्गति का कारण है. इन्होंने यूपी की इस विरासत को अपमानित किया, इन्होंने अयोध्या को भी अपमानित किया, इन्होंने हमारी इस पावन ब्रजभूमि को अपमानित किया, इन्होंने काशी को भी अपमानित करने का काम किया था. और यही कारण है कि यूपी इन्हें अब स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करने वाला है. यूपी का व्यक्ति अब कर्फ्यू मुक्त और दंगा मुक्त वातावरण का अभ्यस्त हो चुका है. अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है. और इस चंगापन को लेकर के वह पूरे उत्साह के वातावरण में डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद दिए जा रहा है. ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन उसी बदलाव का परिणाम है जो चुनौती से भागता नहीं, उन चुनौतियों में संभावनाएं देखता है और उन संभावनाओं को समाधान तक पहुंचा करके सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित करता है. जो लोग चुनौती को समस्या मानते थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश को कर्फ्यू ग्रस्त बनाया था, दंगा ग्रस्त बनाया था, अराजक बनाया था, उपद्रव प्रदेश में बदल दिया था. जिन लोगों ने चुनौती को एक संभावना के रूप में लिया, उन्होंने उन संभावनाओं में सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित भी किए. और वही प्रगति आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको दिखाई दे रही है. 2017 के पहले जन्माष्टमी के आयोजन को थाने, यानी एक ही आयोजन होता था जो थानों में होता था और जेलों में होता था, उसको समाजवादी पार्टी ने बैन कर दिया था, कावड़ यात्रा को रोक दी थी, जन्माष्टमी के आयोजन को इन्होंने रोक दिया था. मैं 17 में जब आया तो मैंने पहले देखा कि कावड़ यात्रा, मैंने पूछा भाई कावड़ यात्रा क्या तैयारी है, जब हमारे अधिकारी अन्य राज्यों के साथ, क्योंकि 5 राज्य उसके साथ जुड़ते हैं, यूपी के साथ उत्तराखंड भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा है, राजस्थान है, हिमाचल है, पंजाब है, सभी जगह के श्रद्धालु आते हैं, तो इनके साथ एक अंतर्राज्यीय बैठक भी होती है, इंटर स्टेट जो बैठक होती थी उसमें हमारे अधिकारी गए थे। मैंने कहा क्या तैयारी है, उन्होंने कहा साहब जो गत वर्ष का जियो है हमने उसको ही जारी करने के लिए कहा। मैंने कहा क्या है गत वर्ष का जियो, उन्होंने कहा साहब डीजे नहीं बजेगा, घंटा संघ घड़ियाले सब नहीं बजेंगे। भाई हमने कहा तो फिर क्या है, ये शिव की यात्रा है या कोई शव यात्रा निकल रही है। मैंने कहा बैठक मेरे सामने कराओ। मैंने अगले सप्ताह बैठक करवाई, सभी राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। मैंने कहा भी देखो यूपी के अंदर डीजे भी बजेगा, संघ घड़ियाल सब बजेंगे, हाँ कावड़ की एक ऊंचाई हम सुनिश्चित कराएंगे, हम सुविधा देंगे, सुरक्षा भी हम देंगे और भक्तिमय माहौल में कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए, जो सुविधा चाहिए हमसे लो। अधिकारी मुझे डरा रहे थे, कह रहे थे साहब उपद्रव हो जाएगा। हमने कहा भी कोई उपद्रव नहीं होता है, मैं जानता हूं कौन उपद्रवी है और उपद्रवियों को हम ठीक कर देंगे। आपने देखा होगा कोई उपद्रव नहीं। इस वर्ष 5 करोड़ श्रद्धालु थे कावड़ यात्रा में, गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच एक ही उसमें 5 करोड़ श्रद्धालु कावड़ यात्री थे। रोहिलखंड का दूसरा है, अयोध्या से बस्ती गोरखपुर वाली तीसरी यात्रा चलती है, प्रयागराज से काशी की चौथी चलती है, बुंदेलखंड की अलग है, मैं इनकी काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उन क्षेत्रों में केवल एक ही कावड़ यात्रा में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे, एक भी जगह कोई उपद्रव नहीं था, कहीं अव्यवस्था नहीं थी, हर व्यक्ति खुशी के साथ आगे बढ़ रहा था। आप लोगों के उत्सव के इस आनंद को भी छीनना चाहते थे, हमने इसको फिर से पुनर्बहाल कराया, कहा नहीं इसको रोका नहीं जा सकता है। अब यूपी बीमारू नहीं है, अब वो यूपी नहीं है जिसकी पहचान गड्ढा युक्त सड़कों से होती थी, वह यूपी नहीं है जिस यूपी की पहचान होती थी कि जहां से सायंकाल होते ही अंधकार प्रारंभ हो जाए वह यूपी का सीमा है। अब यूपी की पहचान देश के अंदर एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क किसी राज्य के पास है तो वह यूपी है। 60% एक्सप्रेसवे हमारे पास है यूपी के पास। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, मेट्रो की सुविधा सबसे ज्यादा सिटी के अंदर चलने वाली है वो यूपी के अंदर, 7 सिटी में वर्तमान में हम मेट्रो की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा संचालित कर रहे हैं। भारत की पहली रैपिड रेल यूपी में, भारत की पहली इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में यूपी से प्रारंभ हुआ। एयर कनेक्टिविटी में देश के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट का नेटवर्क किसी के पास है वो यूपी के पास। 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ आज यूपी इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र आवागमन के माध्यम नहीं है, ये केवल हमारी गति को तेज करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी गति के साथ साथ आर्थिक प्रगति को भी एक नए आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य इस अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोगों ने यूपी के अंदर किया है। जिले 25 हैं, लेकिन आज के दिन पे मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर आप हम लोग 79 यहां के प्रोडक्ट हैं जिसको हम GI टैगिंग कर चुके हैं, यानी वह ग्लोबल मार्केट के लिए अब वह अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है और यह उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर इन सभी चीजों में सफलता प्राप्त की है। आज मैं मान सकता हूं कि यूपी के लिए बेहतरीन अवसर है हमारे यहां नौजवानों के लिए। हर जनपद में हम एक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन की स्थापना के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इन सभी पे हमारे हर जनपद में इसकी ट्रेनिंग की बेहतरीन सुविधा, हमारी वोकेशनल एजुकेशन में भी और टेक्निकल एजुकेशन में भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। अटल टिकरिंग लैब के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी हमने अपने छात्रों के लिए यह सुविधा माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में उसको एक आज की इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का उसे कार्य किया है। यह नया भारत का नया यूपी है, यह अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है तो आधुनिक विकास को भी अपने साथ पूरी मजबूती के साथ लेकर के चलता है। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन जैसी इतिहास प्रसिद्ध वे घटनाएं होती हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम भी किया था, ये वही धरती है। लेकिन उस धरती के सामने आजादी के बाद जो संभावनाएं आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए थी, उन संभावनाओं को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तिलांजलि देकर के कुंद किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, यहां के पोटेंशियल को परफॉर्मेंस के रूप में बदलने की बजाय उसे प्लानवादी बनाने का प्रयास किया गया। दुष्परिणाम क्या था? दशकों तक यूपी के सामने बीमारू राज्य के रूप में अपनी पहचान को छुपाने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। यहां का युवा अपनी पहचान को छुपाता था, यहां का व्यापारी अपनी पहचान को छुपाता था, यहां का हर नागरिक जब यूपी के बाहर जाता था तो अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। गलती उस युवा की नहीं थी, गलती उस बेटी की नहीं थी, गलती उस व्यापारी या उस उद्यमी की नहीं थी, बीमार यूपी नहीं था, यूपी में तो सब कुछ था। यहां संभावनाएं थी, यहां विरासत थी, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि थी, सबसे अच्छा जल संसाधन था, लेकिन योग्य नेतृत्व का अभाव था। बीमारू उत्तर प्रदेश नहीं था, बीमारू वह मानसिकता थी जो 2017 के पहले यूपी में शासन कर रही थी। वह बीमारू थी, वह बीमार थी, इसलिए उसने यूपी को बीमारू बना दिया। उनकी नीति बीमार थी, उनके क्रियाकलाप बीमार थे, इसलिए यूपी बीमारू बना। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यूपी अब बीमारू नहीं है। यूपी भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में आज तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हमने यूपी को बॉटम 3 से टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। मुझे याद है प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं एक बार दिल्ली के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बैठा था। उस समय समाजवादी पार्टी के शिक्षा मंत्री अचानक आ गए तो हम लोग एक ही जो उनका रिटायरिंग रूम था उसी में बैठे थे। तो उसी दिन वे गोरखपुर के एक कार्यक्रम में थे। गोरखपुर आप जानते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की बलिदानी भूमि भी है। गोरखपुर में ही गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नाम पे एक पार्क का उद्घाटन था, तो पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री। और जब उनको भाषण देने के लिए वे गए तो उन्होंने मंच से पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं लिया, उन्होंने इस बात को कहा कि साहब मुझे बिस्मिल्ला साहब के जन्मदिन पर आकर के खुशी हुई। मंच से एक सज्जन ने कहा कि भाई ये बिस्मिल्ला साहब नहीं है, ये सहनाई वादक के उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब नहीं है भाई, ये तो क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल हैं। कहा कि तुम भाजपाई हो इसलिए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का नाम ले रहे हो। ये उस समय के शिक्षा मंत्री बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के। तो जिस व्यक्ति को क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और सहनाई वादन के उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के नाम में ही जिनमें अंतर महसूस न होता हो, वे उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा को कहां ले गए होंगे, आप सहज कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हर नौकरी में सेंध लगाना भी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको उन्होंने अपने कालखंड के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया था, और इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। सुशासन जहां से प्रारंभ होता है, और मुझे लगता है कि कानून का राज कैसे होता है, उस बेटी से पूछिए किराना की। यानी जिसने अपने बचपन में अपने पिता को खोया है, कौन पूछ सकता उन लोगों से। और इसीलिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है कि नहीं, इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ इसने खिलवाड़ किया है तो इसको जेल या जहन्नुम में से एक जगह पहुंचाना जरूर है, क्योंकि ये इसका हकदार है, क्योंकि इसने जुर्म किया है। वह जुर्म किया है जो किसी अपराध से बड़ा अपराध है, और इसीलिए उस अपराध को सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लिया है। आज मुझे प्रसन्नता है किराना में प्लान नहीं है, और कुछ लोग दुस्साहस किए थे, अभी आपने देखा होगा, लोगों ने प्रयास किया था कि अन्य जगह जैसा अपराध कर लेते हैं वैसे यूपी में कर सकते हैं। गलत फहमी के शिकार थे, ये यूपी है, नए दौर का यूपी है, ये बोलता नहीं है, प्रणाम देता है, प्रणाम देता है। कोई ताकत अजमा के देखेगा तो उसकी ताकत को चकनाचूर करके रख देगा यूपी। यूपी पीछे हटने वाला नहीं है, हर उसको जवाब देने की सामर्थ्य रखता है। और कुछ लोगों ने जो जरूरत की थी अभी हाल ही में उसी केराना की भूमि पर, तो उसका जवाब मिल चुका है, इससे ही बड़ा जवाब मिलेगा। और मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, यूपी आज सुरक्षित है, सुशासन के आनंद का अनुभव कर रहा है, अपने विरासत भी और विकास की यात्रा के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस आनंद का अनुभव मुझे लगता है कि कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा युवा भी कर सकता है। आधी आबादी बहनें और माताएं भी कर सकती हैं, अन्नदाता किसान भी कर रहा है, हमारा हस्तशिल्पी कारीगर और वह गरीब भी कर रहा है, जिसको राशन भी मिल रहा है, जिसको आयुष्मान की सुविधा भी मिल रही है, जिसको बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध हो रही हैं, स्कूली शिक्षा भी मिल रही है, और स्किलिंग के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी प्राप्त हो रही है। 9.5 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं, देश के अंदर किसी राज्य में इतनी नौकरी कभी नहीं। और यहां पे अभी सुश्री अंजना ओम कश्यप जी जो बात कह रही थी कि पर्चा लीक और पर्ची लीक जो लोग पर्ची लीक कराते थे वही पर्चा लीक भी करवाते थे। अब यूपी में पर्चा लीक नहीं होता है क्योंकि पर्चा लीक करने वाले को मालूम है कि तो जेल तो जाएगा ही जाएगा, बाप दादों की पूरी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवा करके सड़कों पे कटोरा लेकर के घूमने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमने 2020 में ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कानून बनाया है कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। यही कारण है जब सरकार की नीयत ठीक होती है, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल होता है, हमने 9.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का जो एक वातावरण दिया, 65 लाख नौजवानों को इसके माध्यम से उन्हीं के जनपद या उसी के प्रदेश में हमने उसे नौकरी दी है। और एमएसएमई के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हमने यूपी के अंदर 3.25 करोड़ से अधिक लोगों को प्रदेश के अंदर एमएसएमई उद्योग के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूं किसी भी क्षेत्र में हम आज जाएंगे, यूपी के अंदर किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, पिछली सरकारों ने जनसंख्या को एक चुनौती माना, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य वैसे ही नहीं बना है, क्योंकि यहां जनसंख्या सबसे बड़ी थी, कृषि का क्षेत्रफल सबसे बड़ा था, आबादी बड़ी है तो युवा बड़े होंगे, सबसे ज्यादा युवा आबादी यूपी के पास, इतिहास और संस्कृति की सबसे समृद्ध परंपरा यूपी के पास, धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए समृद्ध जो पर्यटन के केंद्र हैं उसकी असाधारण क्षमता भी उत्तर प्रदेश के पास, और देश का सबसे बड़ा बाजार होने के साथ साथ एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद था। हमारे पास वह सब कुछ था जो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर केवल जनसंख्या की दृष्टि से ही नंबर एक बनाने की सामर्थ्य नहीं रखता था, हर दृष्टि से वह यूपी को नंबर एक पर करने की सामर्थ्य रखता था। लेकिन जिन लोगों ने इस चुनौती को समस्या माना, उन्होंने उत्तर प्रदेश की दुर्गति कर दी, और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की इस चुनौती में संभावनाएं देखी, उन्होंने सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित किए। हम लोगों ने उन संभावनाओं को आज एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। आज हम मानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी, यह हमारे लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में उपयोगी है।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: Every story finds a place. Every voice gets a platform. Every side has its say. Your channel for every headline. Prime Team on India Today, India's only democratic newsroom.

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: Every story finds a place. Every voice gets a platform. Every side has its say. Your channel for every headline. Prime Team on India Today. India's only democratic newsroom.

0: A lot of people take xylem husk for fiber.
1: Yes.
0: And?
2: अगर चिया सीड जितनी मार्केटिंग xylem husk की हो जाए तो इंडिया की गट प्रॉब्लम्स काफी सारी सॉल्व हो जाएंगी.
3: हो जाए. मुझे लगा आप कहेंगे वैरायटी होनी चाहिए फाइबर में, रोज रोज नहीं खा सकते आप पीस ऑफ गोल्ड.
1: सी एज अ डॉक्टर, मेडिसिनल यूज किसी भी चीज का हो, आई विल नॉट रिकमेंड विदाउट टॉकिंग टू योर डॉक्टर. बट इसबगोल इज साइलियम हस्क इज द सुपरमैन फॉर फाइबर, प्रोवाइडेड डन राइट, हैड विद एटलीस्ट 3 glasses ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट 3 liters ऑफ वाटर इन अ डे. आइडली एड अ प्रोबायोटिक टू इट विद कर्ड
3: बिफोर मील आफ्टर मील,
1: 7 to 9 के बीच में, डिनर के 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद. और दवाई ना ले अपने बीपी और एंटीकोगुलेंट्स, अगर हार्ट पेशेंट हैं तो ब्लड थिनर चल रहे हैं वो सब उसके आसपास ना लें, क्योंकि वो जेल बनाता है, सॉल्युबल फाइबर है पेट में, तो डिले करता है अब्सॉर्प्शन. पता लगे आपको एंटीकोगुलेंट चल रहे हैं, आपको हार्ट अटैक आ गया, तो दवाई 4 घंटे पहले और बाद में ना लें. और एक ब्रेथ टेस्ट करवा लें, क्योंकि अगर आपको सीबो जैसी प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि वो पेट में जाके एकदम से बना रहा है ना, जेल बना रहा है, और क्योंकि वो जेल बना रहा है आप उसे पानी दोगे तभी वो बाइल एसिड को अब्सॉर्ब करेगा, बाइल एसिड को एक्सक्रीट करेगा, तभी आपका लिवर एलडीएल को खींचेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को और बाइल एसिड में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन को कम करता है, डायबिटिक्स के लिए सब बोल बहुत अच्छा होता है, डिले करता है ना मामले को, ठंडा कर देता है. जैसे आपकी किसी से लड़ाई हुई तो समझदार आदमी कहता है लेट्स स्लीप ऑन इट टुनाइट, आई विल नॉट रिएक्ट टुनाइट, कल सुबह बात करें. जो जेंजी होता है वो उसी रात को भिड़ जाता है, मतलब सब कुछ लेके, तो इसबगोल कूल्स इट डाउन फॉर अ टाइम. सो तो यू हैव टू बी स्मार्ट, बिकॉज फाइबर इज फॉर योर गट बैक्टीरिया, एंड गट बैक्टीरिया आर द फ्यूचर ऑफ हेल्थ.

0: A lot of people take psyllium husk for fiber.
1: Yes.
0: And?
1: अगर चिया सीड जितनी मार्केटिंग psyllium husk की हो जाए तो इंडिया की गट प्रॉब्लम्स काफी सारी सॉल्व हो जाएंगी.
2: हो जाए. मुझे लगा आप कहेंगे वैरायटी होनी चाहिए फाइबर में. रोज रोज नहीं खा सकते आप पीस ऑफ गोल.
3: सी एज अ डॉक्टर मेडिसिनल यूज किसी भी चीज का हो आई विल नॉट रिकमेंड विदाउट टॉकिंग टू योर डॉक्टर बट इसबगोल इज साइलियम हस्क इज द सुपरमैन फॉर फाइबर प्रोवाइडेड डन राइट हैड विद एटलीस्ट 3 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे आइडली एड अ प्रोबायोटिक टू इट विद कर्ड
2: बिफोर मील आफ्टर मील
3: 7 to 9 के बीच में डिनर के 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद और दवाई ना ले अपने बीपी और एंटीकोगुलेंट्स अगर हार्ट पेशेंट हैं तो ब्लड थिनर चल रहे हैं वो सब उसके आसपास ना लें क्योंकि वो जेल बनाता है सॉल्युबल फाइबर है पेट में तो डिले करता है अब्सॉर्प्शन पता लगा आपको एंटीकोगुलेंट चल रहे हैं आपको हार्ट अटैक आ गया तो दवाई 4 घंटे पहले और बाद में ना लें और एक ब्रेथ टेस्ट करवा लें क्योंकि अगर आपको सीबो जैसी प्रॉब्लम स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ क्योंकि वो पेट में जाके एकदम से वो बना रहा है ना जेल बना रहा है और क्योंकि वो जेल बना रहा है आप उसे पानी दोगे तभी वो बाइल एसिड को अब्सॉर्ब करेगा बाइल एसिड को एक्सक्रीट करेगा तभी आपका लिवर एलडीएल को खींचेगा बैड कोलेस्ट्रॉल को और बाइल एसिड में कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन को कम करता है डायबिटिक्स के लिए सब गोल बहुत अच्छा होता है डिले करता है ना मामले को ठंडा कर देता है जैसे आपकी किसी से लड़ाई हुई तो समझदार आदमी कहता है लेट्स स्लीप ऑन इट टुनाइट आई विल नॉट रिएक्ट टुनाइट कल सुबह बात करें जो जेंजी होता है वो उसी रात को भिड़ जाता है मतलब सब कुछ लेके तो इसबगोल कूल्स इट डाउन फॉर अ टाइम सो तो यू हैव टू बी स्मार्ट बिकॉज फाइबर इज फॉर योर गट बैक्टीरिया एंड गट बैक्टीरिया आर द फ्यूचर ऑफ हेल्थ
4: In this global world of turmoil, India is that one oasis in the desert. India is that one country which has continued to stay the course. We've continued to be the fastest growing amongst the large economies of the world. The naysayers can say what they want, but 7.8% growth is a reality. When I see on television some of the opposition leaders, even possibly you can throw in along with them a former finance secretary or a former Reserve Bank governor, both of whom could not complete their time in India or in the government, they don't even know how to compare apples with apples. They are trying to misguide the people of India, comparing a growth rate and an old series with a new series where the base year itself has changed.